नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साथो। दोस्तों, दुनिया में जब किसी व्यक्ति की सांसें रुक जाती हैं, दिल धड़कना बंद कर देता है और शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो घर परिवार और समाज में कोहराम मच जाता है। लोग रोने लगते हैं, अर्थी सजाई जाती हैं और सब कहते हैं कि अरे, अमुक व्यक्ति का देहांत हो गया, वह मर गया। यह शरीर की वह मृत्यु है जिसे हर कोई अपनी आँखों से देख सकता है और जिसके लिए सब शोक मनाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या केवल सांसों का रुकना ही मरना है? अगर कोई इंसान चल फिर रहा है, खा पी रहा है, लेकिन उसके भीतर का विवेक मर चुका है, उसकी करुणा खत्म हो चुकी है, वह ईर्ष्या, नफरत और लालच के दलदल में एक जिंदा लाश की तरह जी रहा है, तो क्या वह सचमुच जीवित है? कबीर साहब आज हमें उसी अनदेखी और सूक्ष्म मृत्यु का आईना दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी सूत्र। प्राण पिंड को ताजी चले, मुवा कहे सब कोई। प्राण पिंड को ताजी चले, मुवा कहे सब कोई। जीव आछत जामे मरे, सुषमी लखे न कोई। प्राण पिंड को ताजी चले, मुवा कहे सब कोई।

सुशिमला खे न कोय रे साधो, सुशिमला खे न कोय। श्रोताओं, कबीर साहब संसार की अधूरी समझ पर गहरी चोट करते हुए कहते हैं, प्राण पिंड को ताजी चले। जब इस नश्वर शरीर से प्राण यानी वायु, प्राण वायु और जीवन ऊर्जा इस पिंड हाड़ मांस के पुतले को छोड़कर निकल जाती हैं, मुआ कहे सब कोई, तब तो इस दुनिया का सब कोई यानी हर व्यक्ति छाती पीट कर रोता है और कहता है कि यह मनुष्य मुआ यानी मर गया। इससे सब पहचान लेते हैं। लेकिन कबीर अगली पंक्ति में जीवन के सबसे भयानक यथार्थ की ओर इशारा करते हैं, जीव आछत जामे मरे। जब जीव आछत यानी प्राणों और जीवन के रहते हुए भी, सांसें चलते हुए भी, मनुष्य अपने भीतर की आत्मा, अपने होश और अपने सद्गुणों को खोकर जामे मरे यानी अज्ञान और विकारों में जीते जी मर जाता है। सुषिम लखे न कोई, तो सुषिम यानी अति सूक्ष्म आत्मिक मृत्यु को देखने और समझने वाला संसार में कोई नजर नहीं आता। लोग जिंदा लाशों की तरह घूम रहे हैं, पर कोई इस पर रोने वाला नहीं है। यह दोहा जागृत जीवन और आत्मविस्मृति का महासूत्र है। कंठोपनिषद में भी कहा गया है कि जो केवल इंद्रियों के पीछे भागता है, वह मृत्यु के फंदे में फंसा हुआ है। उसकी असली जीवन केवल सांसों का आना जाना नहीं है, असली जीवन तो होश और आत्मबोध का नाम है। जब मनुष्य का विवेक सो जाता है और वह केवल वासनाओं की कठपुतली बनकर जीता है, तो वेदांत की दृष्टि में वह मृत्यु तुल्य ही है। कबीर समझा रहे हैं कि देह का छूटना तो प्रकृति का स्वाभाविक नियम है, लेकिन जीते जी अपनी चेतना को मार देना सबसे बड़ा आत्मघात है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर खुद से यह सच्चा सवाल पूछिए कि क्या हम सचमुच जीवित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, नफरत और चिंताओं में दिन बिताते हैं, केवल सांस लेने को ही जिंदगी मान बैठे हैं? क्या हमारे भीतर का प्रेम, करुणा और परमात्मा की याद आज भी जागृत है? आज कोशिश कीजिए इस भीतरी मूर्छा से जागने की। अपने भीतर उस राम नाम के अमृत का संचार कीजिए जो सोई हुई चेतना को पुनर्जीवित कर देता है। जब आपके भीतर विवेक, प्रेम और शांति की सांसें चलेंगी, तब आप सही मायनों में जीवित कहलाएंगे और देह के छूटने के बाद भी आपकी आत्मा सदा के लिए अमर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए

नमस्कार, ओम शांति। दुरितांसे तिमिर जावो, विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछी न तो ते लाहो। प्राणी जात, दुरित क्या है, तिमिर क्या है, इसके ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की। तिमिर अंधेरा, रात, और ये रात जो है वो कब खत्म होगी उसके इंतजार में बहुत सारे आत्माएं, हम लोग कभी कभी बहुत बार सोचते हैं कि ये रात खत्म कब होगी। देखिए, शायर लोग जो होते हैं वो भी रात को बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते हैं, रात का। संत लोग जो है वो भी वर्णन करते हैं। हर एक का कवि जो है अपनी अपनी भावना के अनुसार रात का वर्णन करता है। रात अच्छी है या बुरी है? रात अच्छी भी है और बुरी भी है, क्योंकि देखिए हमारे जो कहावतें हैं, हम जो कहते हैं, हम जो बोलते हैं, वो भी मुझे लगता है आध्यात्मिक स्वरूप से बोलते हैं। रात में अगर कुछ दुष्कर्म होता है तो हम मान लेते हैं, लेते नहीं लेते? रात में अगर दुष्कर्म होता है तो मान लेते हैं, कोई बुरी बात कहता है तो भी हम सह लेते हैं। लेकिन अगर सुबह सुबह उठ के कोई बुरी बात कहता है तो हम क्या कहते हैं? सुबह सुबह अशुभ मत बोलो, सुबह सुबह ऐसी बातें मत करो। मीन्स सुबह जो है वो आशा है, रात जो है वो निराशा है, और इसे निशा भी कहते हैं रात को। तो ये रात जो है वो तो दिन में है, हर दिन में दिन भी आता है, रात भी आती है, और वो चक्र शुरू है। अगर ये चक्र दिन और रात का शुरू है तो युगों का भी चक्र शुरू होगा। हम तो कहते हैं साइकिल, टोटल साइक्लिक वर्ड है, लीनियर है ही नहीं, साइक्लिक वर्ड है, वर्ल्ड है, लीनियर है ही नहीं, और इसलिए विश्व। और इसलिए जब भी सुबह होती है, सुबह का प्रहर भी, उसे राम प्रहर कहा जाता है। राम प्रहर, रावण प्रहर नहीं। आजकल क्या हो गया है, हमारा रामायण सीरियल शुरू हो गया। देखने के बाद मुझे आश्चर्य लगा कि राम के बजाय रावण हिट हो गया, रावण हीरो बन गया। रावण के ऊपर व्हाट्सएप पे जोक भी आते हैं, उसमें ये भी कहते हैं रावण ने बहुत अच्छा काम किया। रावण ब्राह्मण था, रावण पंडित था, है बिल्कुल सही है, क्योंकि रावण जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में, रावण एक संकल्पना है, और वो रावण जो है वो माया है, मायावी रावण। तो ऐसा रावण सारे विश्व में भरा हुआ है, हर एक के मन में भरा हुआ है, और हर एक के मन में राम भी है। वो मन में जो राम है वो सुबह जागृत होता है, और राम प्रहर में इसलिए हम कहते हैं कि अशुभ मत बोलो, शुभ बोलो। तो ये दुरितांसे तिमिर, तिमिर के ऊपर हमने अभी चर्चा कर रहे थे। तो ये तिमिर जब जाएगा, कब जाएगा? जब सूर्य आएगा। और इसलिए दूसरा जो चरण है या दूसरा आधा चरण है, दुरितांसे तिमिर जावो, जावो ठीक है जाए, लेकिन विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो। विश्व, स्वधर्म और सूर्य, कितना कहे है, कितना बोले उतना कम है। ये विश्व जो है, ये विश्व ची माझे घर, हे विश्व ची माझे घर, सारा विश्व जो है वो मेरा घर है।
बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, यह सारे विश्व में जो बांधव है, सारे विश्व में जो लोग है वो मेरे बांधव है। भारतीय संस्कृति कितनी विशाल है देखिए। संत ज्ञानेश्वर माउली ने कभी ये नहीं सोचा मेरे आळंदी के लोग खुश हो रहे हैं, मेरे पूना के लोग खुश रहे, मेरे महाराष्ट्र के लोग खुश रहे, मेरे भारत देश के लोग खुश रहे, नहीं। उन्होंने मांगा सारे विश्व के लिए, और ये विश्व जो है वो विश्व अपने मुट्ठी में बंद हो जाता है जब हमारा मन विशाल होता है, हमारा दिल विशाल होता है, और ये अच्छी तरह से सच्चा अध्यात्म, सच्चा परमात्मा का प्यार समझ में आता है जब मेरा मन विशाल हो जाता है। तो ये विश्व जो है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, स्वधर्मे और सूर्य और पाहो। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये पसायदान का जो अर्थ है वो अगर शब्दार्थ कहे तो 5 मिनट 10 मिनट में पूरा हो जाता है। सागर जो है वो आप सागर के किनारे बैठ जाओ, थोड़ा सा पैर अंदर डालो, पैर गीले कर दो, हो गया समुद्र स्नान। या सागर की लहरें जो आती है उनके साथ खेलो, डेप्थ में जाओ, डुबकी मारो, क्या मजा आएगा। फिर भी सागर पूरा नहीं होता है, या ऐसा ज्ञान है, या ऐसा प्यार है परमात्मा का, वो इतना महान है, इतना गहन है कि कितनी भी डुबकी मारो मिठास बढ़ती ही जाती है। और ये मिठास जो मिलती है चिंतन में, वो आपके साथ शेयर करने में बड़ा मजा आता है। ये एपिसोड मैंने सोचा था कि विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, उसका कुछ विवेचन चिंतन करे, लेकिन अभी तक हम विश्व स्वधर्म और सूर्य के यहां पहुंचे नहीं है, क्योंकि रात ही पूरी नहीं हो रही है। हम लोग कहते हैं कि रात पूरी कब होगी, दिन कब आएगा, इंतजार है, और कई लोग कहते हैं होगी ही नहीं, होगी या नहीं होगी, होगी जरूर होगी, और उसी समय होगी जिस समय होना है। और ये रात जो है, या भारतीय संस्कृति के अनुसार अंधेरा रहता है, 3-3:30 बजे भी अंधेरा रहता है, लेकिन उस अंधेरे में काम अच्छे करने होते हैं। सुबह का समय है बोलते हैं, राम प्रहर का समय है जिससे मराठी में पहाट बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छी चीजें करनी होती है, परमात्मा चिंतन करना होता है और अपनी जिंदगी बनानी होती है। और यही कार्य हम सब लोग मिलके

नमस्कार, ओम शांती। दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। ये ओवी, ये स्टांजा, ये लाइनर, इसके ऊपर हमारा चिंतन शुरू है। सातवें एपिसोड में, सातवें भाग में हमने दुरित क्या है, तिमिर क्या है, अंधेरा, उसके बारे में चर्चा की। थोड़ा सा विश्व क्या है उसको स्पर्श भी किया। अभी आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो। जब भी मैं पसायदान सुनता था या सुनता हूं कभी भी, तब मुझे हमेशा लगता है कि ये पंच लाइन है, विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो। तीन शब्द है, विश्व, स्वधर्म और सूर्य। कौन देखेगा? एक्चुअली ये पंच लाइन का जब आजकल बहुत व्हाट्सएप पे भी पसायदान का मराठी अर्थ आता है, उसमें मैंने देखा कि सारा विश्व जो है वो स्वधर्म रूपी सूर्य से देखे, सूर्य के प्रकाश में देखे, ऐसा कुछ अनुवाद है। विश्व जो है वो स्वधर्म के सूरज जो है उसके प्रकाश में देखे। लेकिन जब मैंने ये अर्थ सुना या पढ़ा, तब मुझे लगा कि माउली को और कुछ बताना है उसमें से। इतना आसान नहीं है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, विश्व स्वधर्म के सूर्य के प्रकाश में क्या देखेगा, किसको देखेगा, और स्वधर्म का सूरज जो है उसका प्रकाश कैसे आएगा। ऐसे कुछ प्रश्न मन में उठे थे और इसलिए मुझे लगा कि और उसमें गहराई से चिंतन होना चाहिए और माउली को क्या अभिप्रेत है इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। शायद ये तो मेरा विचार है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप ज्ञानी हो, आप समझदार हो, आप उसके ऊपर चिंतन करिए और डिसाइड करिए। तो विश्व, जो माउली ने शब्द प्रयोग किया विश्व, उसके ऊपर जब मैं चिंतन करता था, तब एक्चुअली विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, जो कुछ पसायदान में माउली ने मांगा है वो सब भलाई के लिए मांगा है। तो विश्व और जगत फर्क है। जगत मीन्स अर्थ, और जगत का बहुत अच्छा मतलब भी है, जिसको गति है ऐसा जगत। अर्थ जो है वो घूमती है, जगत जो है वो अर्थ, और फिर विश्व क्या है। मुझे लगता है जगत और विश्व में फर्क है। जगत इज कन्फाइंड टू अर्थ, और ये पृथ्वी पे जो कुछ जीव जीवाणु, जो कुछ जिंदगी है, जीवन है, उससे ही लिमिटेड है, उतना ही लिमिटेशन है। लेकिन विश्व में अनलिमिटेड है। उसमें कितने तारे होंगे, कितने सोलर सिस्टम्स होंगे, उसमें अफाट है, अगणित है, अनलिमिटेड है। और ये अनलिमिटेड जो है वही मांगा है माउली ने। जगत नहीं, जगत का शब्द प्रयोग नहीं किया माउली ने, शब्द प्रयोग किया है विश्व का। और ये विश्व में जो ग्रह है, और हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ये ग्रहों का भी प्रभाव होता है, सोचते हैं ना। इसलिए तो आजकल नवग्रह की अंगूठी है, अलग अलग स्टोन्स है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, और हम ये मान्यता है या समझते हैं कि ये ग्रहों का परिणाम हमारी जिंदगी में होता है।

क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रह जो है कभी इष्ट होते हैं कभी अनिष्ट होते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। तो दूसरा उसका अर्थ ये है कि ये पृथ्वी और ये ग्रह जो है वो अलाइंड नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है। और जब क्यों सिंक्रोनाइज नहीं है? क्योंकि शायद वो सूरज का इफेक्ट जो है वो उनके ऊपर अलग अलग आता है, और इसलिए शायद जिंदगी हमारे जिंदगी के ऊपर उनका इफेक्ट होगा। तो यह अलाइनमेंट जो है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, ये शायद ज्ञानेश्वर जी को, माउली को यह अलाइनमेंट अभिप्रेत होगी। जब ये चेंज हो जाएगा, जब नया युग आएगा, नया संसार आएगा, नई सृष्टि का निर्माण होगा या सतयुग का निर्माण होगा, तब ये सब ग्रह जो है वह अलाइंड होंगे। आपको लगता है? क्योंकि इसी के ऊपर मुझे एक कथा याद आई जो रामायण की कथा है। जब रावण जब थे, रावण तो काफी पढ़े लिखे थे, ऐसे माना जाता है कि रावण दशग्रंथी ब्राह्मण था, विद्वान था, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन फिर भी उसका गायन नहीं होता है। क्यों? गलत फैसला किया, मोह को जीत नहीं पाया। और यही रावण जो है, ये इतना बड़ा भक्त था और उसने शिवजी से कुछ वर मांगा। और फिर ऐसी कथा है कि उसने क्या किया थे कि ये नवग्रह जो है उनका उन्होंने पहिए बनाए थे, पहिए मीन स्टेप्स। और जब वो सिंहासन पे बैठ जाता था तब ये पहियों के ऊपर पैर रख के, मीन्स नवग्रहों के ऊपर पैर रख के वो सिंहासन पे जाके बैठ जाता था। नारद जी देख रहे थे, हैरान हो गए। नारद जी नवग्रह के साथ पास आए और उन्होंने बताया कि आप तो मनुष्य की जिंदगी के ऊपर इतना प्रभाव डालते हैं, आप इतने पावरफुल हो, और ये रावण आपके ऊपर पैर रख के चला जाता है, आप कुछ क्यों नहीं कर सकते? तब उन्होंने कहा कि अभी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पीठ के ऊपर रावण पैर रखता है। अगर वो हमारे सीने के ऊपर पैर रखे तो हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाएगी और फिर उसका पतन शुरुआत हो जाएगा। अभी नारद जी तो है ही, आपको मालूम है नारद जी काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। तो नारद जी रावण के पास आए, और उन्होंने रावण को बताया कि हे रावण महाबली, आप बहुत बलवान हो और आप बहुत तेज भी हो, आपने पूरे नवग्रह जो है उनके ऊपर पीठ के ऊपर पैर डाल के आप चढ़ते हो, लेकिन मुझे ये लगता है ये पीठ के ऊपर क्यों पैर डालना है? अगर सचमुच ही आपको अपनी ताकत दिखानी है तो एक्चुअली उनके छाती के ऊपर पैर रखना चाहिए। रावण को बात जची, उसने बोला बिल्कुल नारद जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं इतना महाबली हूं कि नवग्रहों की पीठ के ऊपर क्यों मैं छाती के ऊपर पैर रखूंगा। क्या हो गया? रावण ने क्या किया, जो नव ग्रह थे उनको पलटा दिया और छाती के ऊपर पैर रख के जाने लगा, और उनकी दृष्टि पड़ गई रावण के ऊपर और उनका पतन शुरुआत हो गया। इसलिए हम बोलते हैं दृष्टि में बहुत ताकत है। दृष्टि में जैसी ताकत है, बुरी भी है अच्छी भी है। हम बड़े बड़े संतों के पास जाते हैं, ज्ञानियों के पास जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी एक दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो हम धन्य हो गए, जाते हैं ना। और हमें अनुभव ही होता है कि ये ऐसे व्यक्ति है जिनकी दृष्टि में बहुत मिठास है, बहुत खिंचाव है, बहुत प्यार है, बहुत सुकून है, बहुत शांति है। और कई लोग ऐसे भी मिलते हैं कि जिनके दृष्टि देखते ही हमें लगता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, उनकी नजर ठीक नहीं है, इसलिए बोलते बुरी नजर और अच्छी नजर। तो ये जो कहने का भाव ये था कि विश्व
जो है यह नवग्रह भी है और पृथ्वी भी है और सब एक दूसरे से अलाइंड है विश्व। अब यह हमारा क्या है? स्वधर्मे सूर्ये पाहु। स्वधर्म क्या है और सूर्य क्या है? धर्म को हमने गलत तरीके से पेश किया है। हम धर्म कहते हैं तो सब सबके कान खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म और अधर्म उसका सही मतलब क्या है, धर्म क्या है और स्वधर्म क्या है, उसके ऊपर भी बहुत गहरा चिंतन करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम सूरज, विश्व स्वधर्मे सूर्य बह, विश्व के ऊपर थोड़ा कुछ चिंतन किया हमने, अभी अगले एपिसोड में हम स्वधर्म क्या है इसके ऊपर करेंगे और फिर सूर्य क्या है उसके ऊपर करेंगे, और तीनों को हम इकट्ठा करेंगे तो फिर माउली को क्या चाहिए, उनका विजन क्या चाहिए, क्या था, इसके ऊपर हम कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स, जीवन को जीने की कला हम सीख रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं इस श्रृंखला में। आज बात करते हैं खाने की। आजकल एक बहुत जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बहुत चर्चा होती है, बहुत सारे आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, आप वो हैं जो आप खा रहे होते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि आप उस पर ध्यान दें जो आप खा रहे हैं, या ये देखें कि आपको क्या खा रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे खान पान से जुड़ी हुई हैं। आज इस पर बात करेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बात खाने की करते हैं कि सारे एस्पेक्ट्स लिए, लेकिन आजकल जो बहुत फोकस भी किया जाता है कि खा क्या रहे हैं और खाने को कैसा, और इस कारण काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, क्या जो हम खा रहे हैं पूरे दिन में खाते हैं, उसका हमारी डाइट का, हमारे खाने का हमारे थॉट्स पर, हमारी बॉडी पर तो पड़ता है सर, हमारे मन पर भी पड़ता है?
1: डेफिनेटली, मन पर उसकी इमीडिएट इफेक्ट है, क्योंकि जो खाते हो उसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें वाइब्रेशंस भी है। दो प्रकार के वाइब्रेशन, एक तो खाने में जो उस चीज में वाइब्रेशंस है वह भी है, और दूसरा जिस व्यक्ति ने वो भोजन बनाया है उसके भी वाइब्रेशन उसमें है। तो दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस आप ले रहे हो, अगर वो वाइब्रेशंस अच्छे नहीं है, जैसे खाने में लो एनर्जी है, तो आपको भी वह जो रियल एनर्जी है वो नहीं मिलेगी, बल न्यूट्रिएंट्स मिल गए। और दूसरा जो बनाने वाला व्यक्ति है, उसने अगर निराशा में खाना बनाया है ना, ईर्ष्या में खाना बनाया है, तो उसी प्रकार के वाइब्रेशंस आपको भी मिलेगी और आप पर भी उसकी इफेक्ट होगी।
0: हम बनाने वाले को नहीं रोक पाते हैं कई बार। अब इस पर वाइब्रेशंस की जहाँ बात आती है, सर शिवानी, रियली नीड टू नो कि खाने पीने की चीज़ें जो मेरी बॉडी के साथ थी, यू नो, बॉडी को ताकत दे रही थी, या वो सारे विटामिन्स जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वहाँ तक सीमित थी, अब वो मेरे माइंड को कैसे हैंडल, मतलब कैसे अफेक्ट कर रही है?
2: हम सब के जीवन में ये अनुभव है और हम सब ने इस डिफरेंस को देखा है कि आप एक पर्टिकुलर मील को लें, वही दाल रोटी सब्जी आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके खाएं, वही पर्टिकुलर मील आप घर में लेकिन एक माँ के हाथ से बना हुआ खाएं, और वही पर्टिकुलर मील आप किसी बहन के हाथ से खाएं जिसको आपने हायर किया हुआ, जो आपके घर में आती है, खाना बनाती है, लेकिन काम के लिए, पैसे के लिए वो खाना बनाती है, और वही खाना आप मंदिर या गुरुद्वारे में प्रसाद के रूप में खाएं। चारों में जो आपको भावना है, जो फीलिंग है, जो एनर्जी है, वो डिफरेंट महसूस होगी, क्योंकि चारों को बनाते समय जो भावना है, इट इज़ टोटली डिफरेंट। रेस्टोरेंट में जो खाना बनता है, इट्स फॉर प्रॉफिट। आप जितना खाएंगे, जितनी बार लेंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ता जाता है। दे आर सर्विंग यू विद दैट इंटेंशन। मदर जो खाना बना रही है, इट्स फुल ऑफ लव, अटैचमेंट। जो मेड जो आपके घर काम करती है, वो खाना बना रही है, आप उसको बोल दो एक चपाती और खानी है, तो उसकी थॉट प्रोसेस कैसे चलनी है, अभी एक और खानी है इन्होंने, क्योंकि उसको पैसे तो उतने ही मिलने हैं। सी, उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है अगर आप और लोगे, लेकिन उसकी काम करना उसको ज्यादा पड़ रहा है। शी डजंट लाइक दैट एनर्जी, हर एनर्जी इज डिफरेंट। और इसी को आप गुरुद्वारे मंदिर में खाएं तो भावना ही अलग है कि भगवान के कार्य के लिए ये भोग बन रहा है, भगवान के बच्चे आकर ये खाना खाएंगे। चारों में फीलिंग एकदम डिफरेंट आती है, ओनली बिकॉज कॉन्शियसनेस ऑफ द वन हु वाज कुकिंग इज डिफरेंट इन ऑल फोर केसेस।
0: व्हाट वी फेल्ट, मतलब अभी तक जो ये था कि शायद हमारी भी तो भावना,
2: वो तो है,
0: हम अगर
2: हमारी
0: मंदिर जाते
2: भी भावना, लेकिन बनाने वाले की भी भावना। देखो, दो काम हो रहे हैं ना, बनाने वाले की भावना खाने के साथ, और फिर स्वीकार करने की भावना खाना खाते टाइम, बोथ आर वर्किंग। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग्स, द वन हु इज कुकिंग एंड देन आफ्टर दैट द वन हु इज ईटिंग। ये भी नहीं कि सिर्फ जो खाना बना रहा है उसने ध्यान दिया, जब हम भोजन ले रहे हैं उसमें भी अपनी कॉन्शियसनेस पर ध्यान देना है। दोनों में बहुत अंतर, मतलब दोनों में वी विल फाइंड दैट द राइट कॉन्शियसनेस विल गिव द राइट एनर्जी टू द माइंड एंड द बॉडी।
1: कई बार आप देखेंगे कि खाने वाले को पता ही नहीं है कि कहाँ बनाया गया है, क्योंकि ये प्रसाद है या घर से आया है या होटल से आया है, लेकिन वो व्यक्ति अगर सही स्टेट ऑफ माइंड में होगा तो कैच कर लेगा। मैंने स्वयं देखा है कि जब हम बहुत जगह पर जाते हैं प्रोग्राम्स के लिए, कईयों के घर में भी रहते हैं, कई बार सेंटर्स पर रहते हैं, तो बल बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है, फिर भी वहां जाते ही लगता है कि यहाँ के वाइब्रेशन अच्छे नहीं है।
2: क्योंकि बहुत बार ऐसे प्रैक्टिस होने के बाद कई बार खाना खाते खाते पता चल जाता है कि हैवीनेस है, नॉट द फूड इज हैवी बट द एनर्जी द फील के जिसने ये खाना बनाया है सम हैवीनेस अबाउट द फूड। और किसी के हाथ का भोजन खाते हुए आपको लगेगा ये बहुत प्यार से बनाया हुआ भोजन है, बहुत इमिजिएटली पता चलता है भोजन स्वीकार। टेस्टी की बात नहीं है, कौन सा खाना ज्यादा टेस्टी ना वो बातें नहीं है, इट्स द फील दैट यू विल गेट व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द फूड।
1: और स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, ये सभी नहीं कैच कर पाएंगे। आमतौर पर जो लग रहा है टेंशन में जी रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट है,
0: हम खा भी किस थॉट में रहे हैं, सी हमारे पास मतलब कभी ड्राइव करते हुए खा रहे हैं, कभी गुस्से में खा रहे हैं, कभी पढ़ते हुए खा रहे हैं, कुछ लिखते हुए, मुझे याद टेलीविजन देखते हुए मुझे याद ही नहीं पड़ता कि नॉर्मल खाने के ऊपर फोकस करके खाया गया हो। लेकिन ये कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च है डॉक्टर साहब जो बताती है कि जिस भाव से खाना बनाया गया है या खाया जा रहा है उसका आपके थॉट्स पर या आपकी बॉडी पर जो खाने का अपना प्रभाव है उससे फर्क पड़ता है?
1: एक तो जो रिसर्च हुई इस प्रकार की रिसर्च हुई है कि थॉट्स का प्रभाव खाने पर क्या होता है, प्लांट्स पर इसकी रिसर्च की गई कि एक प्रकार के सब प्लांट्स लिए गए, जो जमीन थी वह भी एक प्रकार की थी, पानी भी एक जैसा ही उनको दिया गया। उन्होंने ये देखा कि सिर्फ जो पानी देने वाला है वो प्लांट्स पर वह व्यक्ति डिफरेंट थे, कि कुछ तो क्रिमिनल्स को वह पानी वाटर करने के लिए दिया गया, दूसरा नॉर्मल लोगों को दिया गया, और तीसरा जो लोग बहुत भावुक थे ऐसे लोगों को वह प्लांट्स को वाटर करने के लिए पानी दिया गया। और फिर जब 4 मास के बाद उन्होंने देखा तो क्रिमिनल्स ने जिन प्लांट्स को पानी दिया था उनकी ग्रोथ सबसे कम थी। जो लोग भावुक थे, इमोशनल थे, उन्होंने जो वाटरिंग किया था उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा थी, जो नॉर्मल थी वो बीच में थी। और उसका कंक्लूजन ये निकाला क्योंकि जो भावुक थे उन्होंने भावना से यहां तक पूछा भी कि ये क्या हमें करना है, ये क्यों कर आप प्रयोग कर रहे हैं, और बड़ी भावना से प्यार से पानी दिया इसलिए मैक्सिमम ग्रोथ हुई। तो इससे सिद्ध होता है कि भी सचमुच जो हम अगर प्लांट्स पर हमारे थॉट्स की इफेक्ट हो रही है तो खाने की इफेक्ट होगी होगी।
0: ओके, तो मतलब अननोइंगली हम जब खाना बना रहे, इवन आज मदर्स को भी अगर आप देखते हैं तो कई बार बहुत स्ट्रेस्ड होती हैं वो मदर्स।
2: Yeah, that's what consciousness while cooking is very important. हम तो ध्यान रखते कि अगर right consciousness नहीं है तो अभी भोजन नहीं बनाओ, बिकॉज मोर देन गुड यू विल डू डैमेज। हम सिर्फ फिजिकल पर आज दिन तक ध्यान दे रहे थे ना कि
0: खाते हुए बना रहे होते हैं,
2: परेशान, कभी गुस्सा, कभी थके हुए, यू नो यू डोंट वॉन्ट टू कुक बट यू आर कुकिंग, तो इट्स अ वेरी यू नो अच्छी फीलिंग नहीं। और कई बार ये थॉट आती कब खत्म हो, जल्दी करूँ मैं जाऊँ उधर, दैट्स नॉट द राइट एनर्जी वी आर गिविंग टू द फूड। तो जो भोजन वो खाएगा उसको भी वांटेड नहीं फील होगा, बिकॉज जो दे रहा है उसने कैसी फीलिंग से दिया, जल्दी करो, खत्म करो, बस खाओ, मेरा हो जाए काम, नॉट द राइट कॉन्शियसनेस फॉर द फूड। इवन जैसे भाई साहब ने कहा गार्डन, कोई गार्डन में है जो उधर का मालिक है वो खुद उस गार्डन को पानी देता है, आप देखो उसकी कॉन्शियसनेस कैसी है अपने पौधों के साथ। एंड कोई है जिसने माली है, जो गार्डनर है, बस वो आ रहा है 15 मिनट पानी दे के चला जा रहा है, यू विल फाइंड अ डिफरेंस इन द गार्डन। आप माउंट आबू आए जहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ बहुत मेडिटेशन होती है, ओवरऑल एनर्जी ही डिफरेंट है, और आप वहाँ के आकर गार्डन देखें, जो जिनको कुछ नहीं पता इस बारे में, न्यू पीपल कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी कहते हैं यहाँ के गार्डन में कुछ अलग बात है। बिल्कुल, वो लॉजिकली नहीं मालूम है कि वो अलग बात क्या है, इट इज द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस ऑन नेचर। तो ये तो बहुत सारा, अगर आप सिर्फ अवेयर होकर चलोगे ना आपको ये सारे डिफरेंसेस दिखाई देंगे। आप एक प्लांट को लोग घर में, कई लोग ये करते हैं कि अपने प्लांट्स को बहुत प्यार से वाटर करते हैं, उनसे बातें भी करते हैं कई बार, यू नो यू विल सी द ग्रोथ। एंड कोई है जो निग्लेक्टेड है, इग्नोर्ड है, यू विल सी हाउ द ग्रोथ इज। तो इसका मतलब एनर्जी डिफरेंट हो रही है ना दोनों की, अब इसी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो ग्रो करते टाइम, चाहे वो कुक करते टाइम, बात तो एक ही हो गई ना सारे।
1: ग्रोथ पर इफेक्ट हो रही है तो कुकिंग की भी इफेक्ट होगी।
0: और वो खाना बना और वो हमने खाया। ओके,
1: और ये जो बात शिवानी बहन ने बताई मैंने बहुत पहले ऑब्जर्व की थी। आज तो माउंट आबू में आप देखते हैं कि बहुत बड़ा विस्तार हो गया है, लेकिन पहले पांडव भवन बहुत छोटा सा होता था, वो ओम शांति भवन भी नहीं था, तो वहां पर हम बम्बई से कुछ भाई बहनों को ले जाते थे, वहां तब भी योग शिविर चलती थी छोटे छोटे रूप में 50-100 लोगों के लिए, और तब बम्बई से बस लेकर के जाते थे। और जो वहाँ जो जा रहे हैं लोग, साधक को तो पता था कि हम कोई आश्रम में जा रहे, लेकिन वो ड्राइवर को पता नहीं होता था, वो तो हमने बस हायर की है। लेकिन जैसे वो पांडव भवन में पहुंचते थे, ड्राइवर भी कहते अरे यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं। तो यही सिद्ध करता है कि एक व्यक्ति जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं, वह भी उसे कैच कर पाता है कि यहाँ के वाइब्रेशन कितने अच्छे हैं।
0: तो ये बात तो रही कि अगर जो खाना हम खा रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसका हमारे मन पर, मन से फिर थॉट्स पर।
2: सी ऑलवेज वी बीन टॉकिंग कि थॉट्स एनर्जी है, वाइब्रेशन है, मैं जो थॉट क्रिएट करूँगी वो आपके लिए जाएगा। अब ऐसे ही मैं वो थॉट क्रिएट किया, आपको गया। अब मैं वो थॉट क्रिएट किया जब मैं खाना बना रही हूँ, एनर्जी तो है, फूड इज ऑल्सो एनर्जी, तो वो थॉट्स, वो एनर्जी खाने के साथ है। अब मैं आपको डायरेक्टली थॉट्स नहीं दे रही, लेकिन खाने, आई एम सर्विंग इट टू यू ऑन अ प्लैटर एक्चुअली। मैं अपने एंगर को, अपने स्ट्रेस को आपको प्लेट में बहुत सुंदर तरह से सजा कर दे रही हूँ। मैं अपनी ग्रीड को, इफ आई एम डूइंग इट फॉर अ कमर्शियल प्रोसेस, इसीलिए एक्चुअली कहा जाता है प्रॉफिट के लिए जहाँ खाना बन रहा हो तो कभी खाना नहीं खाना चाहिए, नेवर, बिकॉज उसके पीछे की जो कॉन्शियसनेस है इट इज़ वेरी डिफरेंट। तो नेवर, इट शुड बी वेर इट्स बींग कुक्ड विद लव एंड यू नो, आपको खिलाना चाहते हैं, ना कि आपसे कुछ कमाना चाहते हैं। कॉन्शियसनेस इज वेरी डिफरेंट।
0: एक बात मैं जानना चाहती हूँ, अगर हम थोड़ा साइंटिफिक जाएं, कि खाना जो है दैट इज मैटर,
2: नो, फूड इज एनर्जी ना, लिविंग लिविंग
0: लिविंग
2: लिविंग थिंग है ना, प्लांट इज अ लिविंग थिंग। मैटर पे भी तो माइंड का असर होता है।
1: इवन एनर्जी लेवल को मेजर भी किया गया है, और उसमें देखा गया कि फ्रूट्स में सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल है, सेकंड इज स्प्राउट्स, थर्ड इज वेजिटेबल्स, एंड फोर्थ इज रोटी चपाती दाल, उसमें काफी लो है।
2: कुक्ड में भी, अब इसमें वेजिटेबल्स में भी, आप फर्स्ट डे देखो जब वो फ्रेश है, फिर आप उनको देखो 2 दिन बाद, फिर आप उनको देखो 4 दिन बाद, उसमें भी एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाता है।
0: ओके, तो एनर्जी इन व्हाट सेंस, जो डिफरेंट विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब
1: नहीं, नहीं, नहीं,
0: एनर्जी,
1: ये है, इट्स अ सूक्ष्म एनर्जी जो वास्तव में ऑरा के रूप में है, वो फ्रूट्स में, स्प्राउट्स में मैक्सिमम है।
0: तो ये जो एस्पेक्ट पर हमने एक्चुअली, वही हम बार बार बात कर रहे हैं कि लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, हमने खाना कैसे खाना चाहिए, कैसा खाना हो, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हो, कितना प्रोटीन्स हो, उस पर तो पूरा फोकस किया है। अगर हम इस पर फोकस कर पाते हैं, विच एक्चुअली लुक्स क्वाइट डिफिकल्ट।
2: नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट अवेयरनेस चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर मैं अपने माइंड पर अटेंशन रखना चाहती हूँ तो मुझे हर तरफ से अटेंशन रखना पड़ेगा ना। आई कांट डू दिस कि मैं अपना ध्यान रखूँ, मेरे को शांत रहना है, पीसफुल रहना है, फिर मैं जाकर गुस्से को कंज्यूम कर लूँ। एक कुछ डिश खाई और गुस्से की वाइब्रेशन कंज्यूम कर ली, तो मैंने जितनी मेहनत की थी उस पर फिर ये डैमेज हो जाएगा। फिर थोड़ा सा अटेंशन रखूं, वर्क करूं, फिर कोई और एनर्जी कंज्यूम कर लूं, फिर कहूं पता नहीं आज क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी अभी लंच में क्या खाया था, लंच में किसी का स्ट्रेस भी कंज्यूम किया था, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। पर मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही आज, लेकिन कंज्यूम क्या किया था, किसी और की लाइफ की प्रॉब्लम के चिंतन को मैंने अपने लंच के साथ कंज्यूम कर लिया था, इसीलिए नाउ दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई थिंकिंग ऑल्सो। I wouldn't know the exact thought, कि आपकी thought क्या चल रही है, वो मेरी thought हो जाएगी, वो नहीं, लेकिन the quality of the energy will be that. आजकल जैसे Kirlian photography करके एक technique है, जिसमें आप जब photo खींचते हैं तो आपको body की पूरी energy level दिखाई देती है, तो उसमें सिर्फ shape वही होती है, बाकी colors होते हैं depending on the energy. वही Kirlian photography आप food और fruit और cooked food के samples की भी कर सकते हैं, और उसमें clear नजर क्या आता है, आप non-veg फूड है उसकी फोटोग्राफ लें, आप फ्रेश फ्रूट है उसकी फोटोग्राफ लें, आप उसी फ्रूट को 4 दिन बाद लें उसकी फोटोग्राफ लें, क्लियर के जो नॉनवेज फूड है उसकी जो एनर्जी फील्ड आएगी, इट विल बी वेरी डार्क इन कलर, डार्क ब्लू, ग्रे, दैट साइड। फ्रेश फ्रूट है लाइटर, मतलब प्योरिटी है, वही फ्रूट स्टेल हो गया, डार्कर साइड, तो इससे क्लियर दिखाई देता है दिस इज एनर्जी जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, थोड़े साल पहले जब इट वाज अ डीप कोर बिलीफ सिस्टम कि जैसा अन्न वैसा मन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के समय सब कहते थे ये कि जैसा अन्न वैसा मन. आज आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या किसी से बात करो, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट के बाहर से खरीद कर खाना खाया जाता है. दिस कॉन्सेप्ट वॉज नॉट देयर. दिस इज ऑल इन द लास्ट 50-60 years, क्योंकि उस पर बहुत ध्यान रखा जाता था कि खाना कौन बना रहा है और किस स्थिति में बना रहा है. सो दैट एनर्जी फील, अब वो साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है जो हमारी संस्कृति में पहले बताया जा रहा था. टुडे वी आर साइंटिफिकली गेटिंग द प्रूफ ऑफ दैट.
1: इनफैक्ट पानी के लिए भी जैसे बताते हैं ना, भी पहले के जमाने मेरे दादा ये कहानी सुनाते थे कि भी एक व्यक्ति जा रहा था तो उसने कहीं से पानी पिया, तो नॉर्मल विचार है, आगे गए दूसरे कुएं से पिया तो चोरी करने के विचार आए. उसको लगा ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, ऐसे विचार क्यों आ रहे. तो किसको पूछा कि भी कुआ किसने बनाया, तो उसने सचमुच कहा कि एक चोर था, उसमें फिर चेंजेस भले आए लेकिन उसने ये कुआ बनाया है. तो कहते हैं उससे, हाँ मैंने इससे पानी पिया तो शायद मेरे मन में इस प्रकार के विचार आने लगे. और आज तो देखो ना, वो रिसर्च भी जो जापान के साइंटिस्ट की रिसर्च, कईयों को इसके बारे में पता है कि वाटर के क्रिस्टल्स बना दिए गए और बस उस पर फर्क इतना ही था कि सिर्फ नाम अलग लिखा था कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक बॉटल पर लिखा कि मैं तुम्हारे से नफरत करता हूँ, एक बॉटल पर मदर टेरेसा लिखा, एक पर हिटलर लिखा. और फिर उसके क्रिस्टल बना करके जैसे MRI करते, इससे स्पेशल उसको माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी MRI की गई, तो देखा कि भाई जिस पर लिखा था आई हेट यू, वहाँ वाइब्रेशंस दूर दूर जा रहे हैं, वो नजीक क्रिस्टल्स नजदीक में
2: क्रिस्टल बना ही नहीं ना, क्रिस्टल बनता ही नहीं है. एंड जो पीसफुल वाइब्रेशंस के एकदम क्लियर डिफाइंड शार्प क्रिस्टल्स बने हैं.
1: योनी भी बहुत अच्छा उसका एक इंटरप्रिटेशन, हिटलर लिखा था उसमें वह अणु नजदीक आ नहीं, कोशिश कर रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे. तो उन्होंने यह कहा कि भले हिटलर बहुत खराब व्यक्ति था लेकिन कहते कोर जो उनका है ना अच्छा है, जो ब्रह्मा कुमारी इसमें मानते हैं कि भी आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी वो अच्छी है, भले एक्वायर्ड कुछ भी हो, तो ओरिजिनली वो अच्छा व्यक्ति था पर उसने बहुत बुरे काम किए. तो इस प्रकार से वाइब्रेशंस की क्रिस्टल्स पर कितने इफेक्ट होते हैं.
0: तो मतलब सिर्फ ये कहने से, सिर्फ ये लिख देने से ही, या जो भी आपने वाइब्रेशंस दिए, पानी अगर ऐसा क्रिएट कर रहा है, तो हम जो खा रहे हैं, इनफैक्ट मैं बात नॉन वेजिटेरियन फूड की हुई, ये भी आजकल एक बहुत ज़्यादा इस पर बात करते हैं लोग. सी इट्स अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन. बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, वेजिटेरियन बने, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन का सबको पता चलता जा रहा है कि कितना भी अपने आप को हम समझाते हैं कि प्रोटीन लेवल चाहिए, बच्चों को देना चाहिए क्योंकि उससे जो प्रोटीन्स की मात्रा है वो ठीक मिलती है ग्रोइंग एज में, लेकिन कर नहीं पाते हैं. तो वॉट इज़ द डिफरेंस, यू नो, वाई वेजिटेरियन फूड इज बेटर देन नॉन वेजिटेरियन फूड?
1: कई दृष्टि से अगर आप देखो, जैसे भी आपने बताया ना प्रोटीन की बात भी, इनफैक्ट दालों में जो प्रोटीन है वो एक से बहुत अच्छा है. सोयाबीन प्रोटीन इज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन. वास्तव में मिथ है कि भी नॉन वेज में ज़्यादा प्रोटीन है, तो एक तो ये बात बल प्रोटीन की. साथ साथ में अगर हम हार्मफुल इफेक्ट्स को देखें कि आज जो सबसे जो नंबर वन किलर इज व्हाट, क्या है नंबर, हार्ट डिजीज. और हार्ट डिजीज क्यों हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के कारण. तो आज नॉन वेज में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है और भी सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल है कि जो सीधा जाके हार्ट की धमनियों में चिपकता है. तो इसके कारण ये एक सिंगल रीजन से भी हमें वेजिटेरियन बनना चाहिए. और एक सूक्ष्म बात की जो आमतौर पर लोग नहीं समझते हैं कि जब प्राणी को मारा जाता है ना, आपके पीछे कोई गन लेके भागे तो क्या होगा, एक्सट्रीम फियर निर्माण होगा और उससे फिर वो टॉक्सिक केमिकल्स निर्माण होते.
0: अच्छा,
1: एड्रेनालिन,
0: क्योंकि वो सारा वो होगा ना, अब वो कौन सा सिंपैथेटिक,
1: हाँ सिंपैथेटिक
0: नर्वस सिस्टम जो है जी, तो वो जानवरों में भी वैसे ही होता है.
2: एंड लास्ट ना उस टाइम आपने मार दिया, सिर्फ गन लेके भी नहीं, हम तो खींच के वो स्लॉटर हाउस में लेकर जा रहे हैं,
1: उनको पता भी अभी मारने वाले,
0: बांध के टॉक्सिक वो चल रहे,
1: केमिकल्स चल रहे,
2: टॉक्सिक थॉट्स. और जो गिरीश भाई ने बताया वो सारे केमिकल्स बॉडी में सीक्रेट होते हैं,
1: कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन हाई लेवल में रिलीज होता है. और वह जब आप मांस को पकाते हो तब भी वह खत्म नहीं होता.
0: अच्छा, तो वो रिटेन रह जाते हैं.
1: इट्स अ प्रूवन फैक्ट, ये जो केमिकल्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते. तो आप उसको खा रहे हो, नहीं सोचो
0: एक्सट्रीम ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं. तो कहीं ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि ये खाते हैं तो उनका प्रोडक्शन और इंक्रीज हो जाता है?
1: प्रोडक्शन उसकी इफेक्ट होगी, क्योंकि ऐसे तो खाते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, लेकिन उसकी ओवरऑल इफेक्ट आपके बॉडी पर भी होगी.
0: लेवल ऑफ दिस दीस हार्मोन्स बिकम्स मोर
1: इंक्रीज एंड नो देन दैट हार्मफुल इफेक्ट विल इंक्रीज
2: एंड एनर्जी भी कौन सी कंज्यूम की, फियर और एंग्जायटी की. तो अब आप डिसाइड करो, आप बोल रहे हो ना छोड़ने में मुश्किल लगता, तो प्रोटीन्स है, यू जस्ट हैव टू टेल योरसेल्फ दिस इज प्रोटीन्स प्लस फियर एंड एंग्जायटी.
0: And now, then so many harmful.
2: Now do I want to eat? This is that non-veg dish. It is proteins plus fear and anxiety. And yahan hamara dal, paneer, sprouts. This is proteins minus fear and anxiety. Now choose. It's open. You know, everyone has the right to choose. Lekin ek bar aapne choice ki hai ki main fear aur anxiety ko aur ye sab hormones ko consume karne wala hu. Phir nahi apne aap ko kahe ki main kyun pareshan rehta hu. Mujhe kyun choti choti baaton mein gussa aa raha hai. Maine consume kiya hai usko aur main consume kar raha hu every day. To kyun nahi aayega? Bachna chahta hu, koi baat nahi, phir chhodu. ट्राई तो करे, एक्सपेरिमेंट तो करके देखे ना. हर रोज वही कंज्यूम कर रहे हैं, फिजिकली भी डैमेज, यू नो, फियर कंज्यूम करना, हम किसी के फियर को कंज्यूम कर रहे हैं. व्हाट मस्ट बी द लेवल ऑफ फियर व्हेन समवन इज गोइंग टू बी स्लॉटर्ड. वी जस्ट हैव टू थिंक कि मेरे अंदर किस तरह की थॉट्स चलेंगे इफ आई वॉज गोइंग टू बी स्लॉटर्ड जस्ट नाउ. दैट इज व्हाट आई एम कंज्यूमिंग.
0: तो वो जो एक्चुअली अगर हम देखें भी कि कोई डरा हुआ या गुस्से में होता है व्यक्ति या घबराहट में होता है, हम उसके साथ होते हैं, हम उसकी घबराहट का हिस्सा बनते
1: हैं.
2: आपको फील नहीं होता
0: यू नो एकदम से डर भाई, अगर आप फियर के माहौल में हैं, आपको खुद फियर हो, यू स्टार्ट गेटिंग अफ्रेड यू नो.
1: एग्जाम में होता है ना, एग्जाम सबने, एक बच्चा डरा हुआ है सारे डर जाते हैं, एक का फियर. और देखो दो इम्पोर्टेंट रीजन है, एक तो कि आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, क्या उसमें डीजल डालेंगे? नहीं डालेंगे, कोई कहे भी सस्ता
2: हो जाती,
1: खराब भी हो जाएगी. तो ऐसे ये समझने की जरूरत है कि जो हमारी गाड़ी है वो किसके लिए बनी है, नॉनवेज के लिए बनी है या वेजिटेरियन डाइट के लिए बनी है. और अगर आप एनिमल किंगडम में देखो, ह्यूमन बीइंग तो सबसे वो एडॉप्ट हो गए, एनिमल किंगडम में वेजिटेरियन एनिमल भी है, नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है. अगर आप देखेंगे कि जो वेजिटेरियन एनिमल है उनकी पूरी सिस्टम
0: हर्बीवोरस
1: और हमारी सिस्टम, हाँ हर्बीवोरस एनिमल, वो एग्जैक्टली सेम है.
0: अच्छा,
1: देखिए वेजिटेरियन एनिमल्स जो है उनके कनाइंस जो है वो बहुत बड़े नहीं है, चीर फाड़ करने के बड़े दांत नहीं है, हमारे भी कनाइंस बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं. ऐसे जो मुंह में सलाइवा होता है वो नॉन वेजिटेरियन एनिमल का हाईली एसिडिक है, हमारा सलाइवा है वो अल्कलाइन है. हमारे स्टमक में भी जो एसिड है वो बहुत कम है, नॉन वेजिटेरियन एनिमल के स्टमक में बहुत मात्रा में एसिड होता है. ऐसी एक मेन डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वो कितने बड़े हैं पता है ना, अवर स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर 22 फीट लॉन्ग, वो कॉइल के रूप में पेट में पड़े हैं. जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सिर्फ 6 फुट लंबे, क्योंकि पहले से कुदरत को पता था कि नॉन वेजिटेरियन एनिमल इसमें फाइबर नहीं होना है तो वह धीरे धीरे पास होगा, तो इसके लिए वो 6 फीट के बनाए. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बनाए 22 फीट के, क्योंकि पता था कि बहुत सारा फाइबर कंज्यूम करेगा, वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करेगा तो वह फिर स्लोली जाएगा और उसको 24 घंटे लगेंगे बाहर आने में. और भी कुछ अगर हम चीजें देखें कि बाइल का प्रोडक्शन, लीवर जो बाइल सिक्रेट करता है, हमारे में बाइल की मात्रा कम है क्योंकि हम फैट कम कंज्यूम करने वाले हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड में बहुत ज्यादा फैट है, तो इसलिए जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल है उनका बाइल का भी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए इतनी मात्रा में बाइल को चाहिए. तो ये सारी सिस्टम को ही देखो, हमारी सिस्टम वेजिटेरियन एनिमल्स की तरह है. और दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है ना वो जीभ से पानी पीते हैं.
0: अच्छा,
1: हम जीभ से, हम तो मुंह से पीते हैं, वेजिटेरियन एनिमल ही मुंह से पानी पीते हैं. और भी एक डिफरेंस है कि जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है उनको जो टेम्परेचर को कंट्रोल करना है ना, अब एक कुत्ते को देखना से करेगा जब उसको टेम्परेचर को डाउन लाना है, लेकिन हमारे में वो सिस्टम ही है कि ऑटोमेटिक हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर है वो नॉर्मल होने लगता है. दैट इज देयर ओनली इन वेजिटेरियन एनिमल्स. तो आवर होल सिस्टम इज सच, उसको भी कोई समझ ले तो चेंज हो जाए.
0: इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. और जिस तरह की आज हमने वही बार बार हम कह रहे हैं कि अवेयरनेस कि पता चला है, क्योंकि अभी तक शायद सब बोलते थे कि वेजिटेरियन होना चाहिए या खाना जो है वो सही, और जैसा कि अन्न का मन पर असर है, सुनते आए थे समझ नहीं पा रहे थे और ये सोचते थे कि ये हमारे हाथ में है ही नहीं, सी हम खाना बना नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे इंक्लिनेशन नहीं है, और हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये हमारे को इतना फर्क डाल रहा है। अच्छा खाना खाने को, जो हेल्दी सपोजिटली खाना है, उसके ऊपर हमने फोकस शुरू किया अगेन, बिकॉज हमें लगा कि वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन आज जब हम थॉट बार बार हम कह रहे हैं सोच समझ के सोचना है, अगर उस पर ये सारी चीजें इतना असर डाल रही हैं, थैंक यू सो मच। सल्यूशन हमारे सामने है, आज अवेयरनेस है, आज ज्ञान है, आज समझ में आ रहा है कि अभी तक हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे कि हम खा क्या रहे हैं। हमने बहुत बार सोचा कि राइट डाइट, उतना विटामिन्स खाने हैं, उतने कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, बच्चों के लिए भी हम फिक्स कर रहे थे, हस्बैंड के लिए, अपने लिए, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि हम सोच क्या रहे हैं। अगर इस पर फोकस करना है तो खाना बनाते वक्त और खाते वक्त हम क्या सोच रहे हैं उसका हमारे विचारों पर, हमारे शरीर पर भी बहुत असर पड़ रहा है। और ख़ासकर अगर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच की कश्मकश थी, आज समझने की ज़रूरत है कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और जैसा कि शुरू में कहा था कि हम क्या खा रहे हैं उससे हम बनते हैं, या हमें क्या खा रहा है हमें ये भी सोचना है। तो बॉल हमारे कोर्ट में है, हमने देखना है कि कैसे आगे खेलेंगे। कोई बात मन में है, कोई विचार है, आप हमारे साथ शेयर करें, हमें ईमेल करें या फिर फ़ोन पर संपर्क करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। ओम शांति।

0: शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी
1: एपिसोड नंबर 3 हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक।
0: जल जीवन मिशन हर घर जल,
1: समझो भी अपनाओ भी। जल जीवन मिशन और उसके सभी घटकों को समुदाय को सरल भाषा में समझाने पर केंद्रित।

0: Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation द्वारा संचालित Community Radio Association द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: भवन।
1: खंड एक।
2: अरे पता नहीं स्वच्छिका कहाँ रह गई, इतना लेट तो वो कभी नहीं होती थी। लगता है आज मुझे अकेले ही कार्यक्रम चलाना पड़ेगा।
1: अरे अरे अरे रुको रुको रुको सुजल, आ गई मैं।
2: अरे आ गई तुम, मुझे लगा कि कहीं पानी भरने तो नहीं चली गई।
1: पानी भरने? नहीं नहीं सुजल, कुएं हैंडपंप पर जाना अब हुआ बीता हुआ कल, अब तो है हमारे घरों में नल से जल।
2: हाँ सही कह रही हो तुम, पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है।
1: मुझे आज भी याद है कि कैसे मेरे गांव में महिलाएं, बच्चियां और लोग सुबह से पानी के इंतजाम में लगे रहते थे ताकि बाकी काम समय पर पूरे हो सके।
2: सही कर रही हो, कितनी बार तो उन्हें दिन में दो दो चक्कर लगाने पड़ते थे ताकि पानी कम न पड़ जाए।
1: और बच्चियों की पढ़ाई भी छूट जाती थी। यही नहीं, गंदे पानी के सेवन से बीमार होना तो आम बात हो गई थी।
2: पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा?
1: सोचू मैं सोचू तेरा ढंग कैसा।
2: वाह स्वच्छिका, ये तो नया गाना बन गया।
1: सुजल महाशय, गाने का समय खत्म, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए।
2: ओ हाँ हाँ हाँ, आप सभी को सुजल का
1: और स्वच्छिका का नमस्कार।
2: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम प्रस्तुत है।
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो के जुबानी, परिवर्तन की ओर। सुजल, जल जीवन मिशन ने समय बदल दिया है। जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, इसके तहत हर घर जल कार्यक्रम ने देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में नल से जल पहुँचाना शुरू कर दिया है।
2: हाँ, अब महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चियों को पानी ढोने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
1: लेकिन ये सब आसान नहीं था। कई लोग सोचते हैं कि जल जीवन मिशन बस पाइप बिछाने का काम है, जबकि सच्चाई ये है कि यह हर परिवार के लिए रोज साफ, सुरक्षित और पर्याप्त पानी पहुंचाने का संकल्प है।
2: जो पानी आज नल में दिखा रहा है वह अपने आप नहीं आया, इसके पीछे पूरे देश की मेहनत और लोगों की भागीदारी है। अब जल जीवन मिशन 2.0 के तहत इसे 2028 तक बढ़ाया गया है ताकि हर घर तक पानी पहुंचे और हर गांव में जल योजनाओं का बेहतर संचालन, रखरखाव और सतत सेवा सुनिश्चित की जा सके। राहें खुद ब खुद बनेगी, तुम बस कदम बढ़ाते चलो, होगा हर काम आसान, तुम मन में अलख जगाते चलो।
1: सही कहा, होगा आसान हर वो काम जो अब तक तुमको भारी था, होगा आसान हर वो काम जो अब तक तुमको भारी था, जीत उसी की होती है जिसकी पूरी तैयारी थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश ने हर मुश्किल में काम किया, कई रेगिस्तान की कहीं रेगिस्तान की गर्मी में, कहीं पहाड़ों में, आज हर घर और हर बस्ती तक नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है।
2: अरे क्या हुआ?
1: ये सब सुनकर किसी के भी आंखों में आंसू आ जाए। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, देश की लाखों महिलाओं और बच्चियों के सर से आज पानी ढोने का बोझ उतर गया है। अच्छा, नल से जल मिलने के बाद हमारे गांव में और क्या क्या बदलाव आया?
2: पहले पानी पी लो फिर बताता हूँ।
1: जी जरूर।
3: देखो स्वच्छिका, सिर्फ पानी ही नहीं आया, गांव के लोग भी इस योजना से जुड़े हैं। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से लोग मिलकर इसे संभाल रहे हैं और हमारी माताएं बहनें इसमें आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभा रही है।
1: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, ये क्या होता है जरा अच्छा से समझाओ ना।
3: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति यानी पानी समिति के लोग, जिनका गठन हर गांव में होता है और इस समिति में आधी महिलाओं का होना जरूरी होता है।
1: पर इनका कार्य क्या होता है?
3: चलो आज यह भी बता देता हूँ। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति यानी पानी समिति का काम है ये सुनिश्चित करना कि गांव में पानी की सप्लाई ठीक से चल रही है। नल जल मित्र ऑपरेटर की मदद से मोटर, पाइपलाइन और टंकी का रखरखाव कराया जाए, लीकेज ठीक किए जाए, पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच हो, और हाँ, पानी के इस्तेमाल के लिए जो शुल्क है उसके लिए लोगों को जागरूक करना।
1: बाप रे, ये सब वो गांव वाले खुद करेंगे?
3: अरे नहीं, ये सब करने के लिए पंचायत उनकी मदद करती है। साथ में वे कुछ कार्यों को करने के लिए स्व सहायता समूह की दीदी की भी मदद लेते हैं।
1: अच्छा, और पंचायत स्तर पर सरपंच, प्रधान, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि के क्या काम होते हैं?
3: पंचायत स्तर पर सरपंच, प्रधान, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि पानी समिति के साथ मिलकर योजना का रखरखाव करते हैं ताकि लोगों का भरोसा बना रहे।
1: अरे वाह, अब समुदाय की भूमिका भी बता दो सुजल कुमार।
3: स्वच्छिका, समुदाय सबसे अहम कड़ी है। उनके साथ के बिना किसी भी योजना का रखरखाव और उसकी सततता कायम रहना बहुत मुश्किल है। इस योजना के लिए समुदाय और हर व्यक्ति का कर्तव्य है पानी समिति एवं पंचायत के साथ मिलकर कार्य करना, समय पर जल सेवा शुल्क देना, पानी बर्बाद न करना, पानी के स्रोत की रक्षा करना एवं इसे बनाए रखने के लिए जल के पुनर्भरण यानी रिचार्ज पर कार्य करना, शिकायत छिपाई नहीं तुरंत बताना और सरकार के साथ मिलकर समाधान भी ढूंढना।
1: जब हर व्यक्ति कहे ये योजना मेरी है तभी योजना टिकाऊ होती है।
3: और इसलिए अब योजनाओं की जानकारी जैसे पानी की आपूर्ति, गुणवत्ता और रखरखाव को सार्वजनिक करने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति जानकारी के आधार पर अपनी भूमिका निभा सके।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, पर योजना में कुछ खराबी भी आती होगी, उसे कैसे ठीक करते हैं?
3: ऐसी स्थिति में ग्रामीण अपने गांव के सरपंच या पानी समिति के सदस्य को बता सकते हैं। इसे चलाने के लिए एक ऑपरेटर भी होता है जिसे हम नल जल मित्र कहते हैं। वो भी छोटी मोटी समस्या का समाधान कर देता है। बड़ी समस्या के लिए जिले स्तर पर स्थित DTU से संपर्क कर उनसे मदद ली जा सकती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
3: इस मिशन ने अब तक क्या क्या प्रगति की है और जल जीवन मिशन 2.0 में क्या खास है हमें बताएंगे श्री कमल किशोर सोन, जो जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक है। चलिए उनको सुनते हैं।
0: नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी के माध्यम से आप सभी से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चूंकि आज का यह एपिसोड जल जीवन मिशन पर केंद्रित है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। साथियों, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक और गांव के आंगनवाड़ी व स्कूल जैसे संस्थानों तक पाइपलाइन के माध्यम से नल से साफ और सुरक्षित पीने का पानी पहुंचे। पिछले कुछ वर्षों में हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े हैं। आज मिशन उस चरण में पहुंच चुका है जहां कई गांवों और पंचायतों में योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अब उनका संचालन और रखरखाव सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसी क्रम में मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूँगा कि जल जीवन मिशन का दूसरा चरण लागू हो चुका है जिसके अंतर्गत मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। इस नए चरण में जल जीवन मिशन अब नए सुधारों के साथ संचालित हो रहा है। अब हमारा ध्यान सिर्फ हर घर तक नल से जल पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि यह सेवा नियमित, सुरक्षित और लंबे समय तक सतत रूप से बनी रहे। इसके लिए गांव के लोगों की भूमिका को और मजबूत किया जा रहा है। जल सेवा आकलन के माध्यम से गांव के लोग खुद अपनी योजना की समीक्षा करते हैं एवं पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता और सेवा की स्थिति को समझते हैं। इसके बाद जिला स्तर की तकनीकी टीम यानी DTU डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल यूनिट की मदद से सेवा में सुधार की योजना तैयार करती है। DTU पंचायतों को रख रखाव एवं मरम्मत के कार्यों में भी मदद करता है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत जन भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु संवाद कार्यक्रम के माध्यम से दो स्तरों पर सीख और अनुभव साझा किए जा रहे हैं। सुजल ग्राम पेयजल संवाद में ग्राम और ग्राम पंचायत अपनी अच्छी पहल और उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर तक साझा करते हैं, जिससे उन्हें पहचान मिलती है, उनके कार्यों को सराहा जाता है और देश के दूसरे गांव भी उनसे सीखते हैं। वहीं DC और DM पेयजल संवाद एक ऐसा मंच है जहां जिला प्रशासन अपने जिले के सफल उदाहरण और अनुभव साझा करता है, जिससे पेयजल से जुड़े प्रभावी समाधान और श्रेष्ठ कार्य पूरे जिले के साथ साथ अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचते हैं। वहीं DC DM पेयजल संवाद में जिला प्रशासन अपने जिले के सफल उदाहरण और अनुभव साझा करते हैं, जिससे पेयजल संबंधित जरूरी समाधान और बेहतर कार्यों को पूरे जिले और अन्य स्थानों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, जल जीवन मिशन केवल पाइप और टंकी लगाने की योजना नहीं है, बल्कि यह जन भागीदारी पर आधारित एक जन आंदोलन है। जब गांव खुद अपनी जल व्यवस्था को समझकर संभालता है, तभी यह लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। इसलिए जल स्रोतों की सुरक्षा, गुणवत्ता बनाए रखना और समुदाय की भागीदारी इस मिशन के प्रमुख आधार हैं, ताकि पानी आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित बना रहे।
1: खंड दो।
3: स्वच्छिका, जैसा मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन ने बताया, जल जीवन मिशन 2.0 में कई सुधारणाएं लाए गए हैं, जिनसे पानी की सेवा को नियमित, टिकाऊ और बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सोचो, अभी तो देश के 15 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल आ रहा है। जब देश के सारे घरों में नल से जल आने लगेगा, वो भी नियमित सतत, तो लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना?
1: हाँ ना, लेकिन जो जल नल से आएगा उसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सब गांव वालों की ही तो है, उन्हीं को निभानी भी होगी ताकि कोई बीमार ना पड़े। कौन हंसा? सुजल, तुमने सुना?
3: ये वही है तुषिका, तुम्हारी बातें सुनकर हंस रही है।
1: मैंने कोई मजाक की बात कही है क्या?
3: अभी अभी तुमने क्या कहा?
1: क्या कहा?
3: यही कि जल को स्वच्छ करने की जिम्मेदारी लोगों की भी होगी।
1: तुम बार बार हंस क्यों रही हो? तुम्हारे भोलेपन पर हंस रही हूँ। अगर तुम लोगों को साफ पानी की परख होती, उसका महत्व पता होता, तो मैं कब की यहाँ से दूर जा चुकी होती। तुम लोग सोचते हो कि बस पानी आएगा तो सब ठीक, अगर पानी गंदा हो जाए तो बीमारी, अस्पताल, सब मेरी वजह से होगा। मैं दूषिका, पानी प्रदूषण की रानी।
3: ओ पानी प्रदूषण की रानी, अब तुम्हारा दौर खत्म।
1: इस बार हम तेरी एक नहीं चलने देंगे।
3: हमने ठान लिया है, लोगों को साफ पानी का महत्व भी बताएंगे।
1: ओह, तो क्या अब तक लोगों के घर पानी नहीं आता था? ऐसा क्या बदलाव आ गया है?
3: बिल्कुल आता है, लेकिन जल जीवन मिशन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर पेयजल स्कीम में स्रोत से आने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए डिसइंफेक्शन यूनिट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था हो। क्लोरिनेशन, फिल्टरिंग और अन्य ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं के माध्यम से साफ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति हो सके।
1: पर पानी तो बाद में भी गंदा हो सकता है, इसे लोगों को पता कैसे चलेगा?
3: तुम्हें पता नहीं है, जल जीवन मिशन में पानी की गुणवत्ता की जांच बहुत जरूरी हिस्सा है। तुम्हें पता है इसके लिए हर गांव में 5 महिलाओं एवं दीदियों को फील्ड टेस्टिंग किट FTK से पानी की गुणवत्ता की जांच करना सिखाया जाता है। जरूरत पड़ने पर सैंपल या नमूना को लैब में भी भेजकर सत्यापित किया जाता है। जल जीवन मिशन के नए चरण में ऐसे महिला दीदी समूहों को अब सुजलाम शक्ति का नाम दिया गया है।
1: स्वच्छिका मैडम और सुजल भाई साहब, लोग तुमसे ज्यादा मेरी बात मानते हैं। तुम लोग तो उन्हें कठिन कठिन टास्क देते हो, ये धो वो साफ करो, ऐसा रखो वैसा रखो। मैं उन्हें कहती हूँ छोड़ो, हटाओ, फेंको, रहने दो, कोई चिंता मत करो। लेकिन अब सब हमारी बात सुनेंगे। हम लोगों को बता रहे हैं कि अपनी छोटी छोटी आदतों से हम पानी के स्रोत को साफ रख सकते हैं।
3: क्योंकि शुद्ध पेयजल हमें बीमारियों से बचाता है, बच्चों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है और घर का खर्च भी कम करता है। जब परिवार स्वस्थ रहता है तो दवा और इलाज पर होने वाले खर्चे बचता है, जिससे पैसे बच्चों की पढ़ाई, पोषण और घर की जरूरतों पर खर्च किया जाता है। इसीलिए प्रदूषिका महोदया, अब तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो।
1: ये जल जीवन मिशन तो सबको जागरूक बना रहा है। कोई बात नहीं, अभी जा रही हूँ लेकिन फिर आऊंगी। जिस गांव के लोग कमजोर पड़ेंगे वहाँ फिर पहुँच जाऊंगी मैं, देखना वो मुझे जरूर मौका देंगे।
3: जाओ जाओ, तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है, भागो।
4: चलो चलो सुने हम रेडियो की सुबानी, सच सुजल गांव की एक अनोखी कहानी।
5: हम पानी बना नहीं सकते, सिर्फ बचा सकते हैं। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, पानी चाहिए तो उसे बचाइए। लीकेज रोकें, पानी बचाएं। क्या आप जानते हैं मामूली लीकेज से ही हर महीने 1,000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। यदि एक नल से हर मिनट 45 बूंद पानी टपकता है तो 3 घंटे में 1 लीटर से ज्यादा पानी बह जाता है। पानी की हर बूंद मायने रखती है। जल बचाएं, भविष्य बनाएं।
6: स्वच्छ सुजल, स्वच्छ सुजल, यही है भारत का नारा न्यारा।
7: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी।
1: खंड 3, समुदाय की भूमिका। सुजल, क्या सचमुच लोग हमसे ज्यादा दूषिका की बात मानते हैं?
3: स्वच्छिका थोड़ी सी लापरवाही और आलस के कारण हम अपने पानी के स्रोतों को गंदा कर लेते हैं और दूषिका की जीत हो जाती है।
1: अच्छा, तुमने बताया था कि जल जीवन मिशन में निर्माण के समय मुख्यतः सरकार और विभाग काम करते हैं, समुदाय के साथ मिलकर। लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद ये योजना चलाने की जिम्मेदारी गांव के लोग कैसे संभालेंगे? योजना समुदाय व पंचायत को कैसे और कब दी जाएगी?
3: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निर्माण पूरा होने के बाद कुछ दिन स्कीम को जांच के लिए ट्रायल रन किया जाता है ताकि इसमें कोई कमी न रह जाए। इसे कमीशनिंग कहते हैं। सब कुछ सही पाने के बाद गांव स्तर की योजनाओं को पंचायत एवं समुदाय को सौंप दी जाती है और यह करने के लिए सरकार समुदाय के साथ मिलकर इस अवसर को जल अर्पण दिवस के रूप में मनाती है। यह ट्रायल रन कम से कम 15 दिन का होना जरूरी है।
1: जल अर्पण दिवस, बड़ा ही प्यारा नाम है, इसका मतलब क्या है?
3: ये जानकारी हमें जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन दे रहे हैं।
0: मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। चलिए आज के इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि जल अर्पण दिवस क्या है। 73वें संविधान संशोधन और जन भागीदारी की भावना के अनुरूप जल जीवन मिशन में जब कोई जल आपूर्ति योजना पूरी होती है तो उसे संचालन और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत और समुदाय को सौंपा जाता है। इसी जिम्मेदारी को उत्सव के रूप में स्वीकार करने के लिए जल अर्पण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जल अर्पण दिवस उस गांव के लिए एक ऐतिहासिक दिन होता है जब सरकार और विभाग जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनी ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजनाओं को औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय को सौंपते हैं। इस दिन गांव का समुदाय अपनी जल व्यवस्था को गर्व, जिम्मेदारी और अपनापन के साथ स्वीकार करता है और उसे संभालने व सुरक्षित रखने का सामूहिक संकल्प लेता है।
3: जल अर्पण दिवस, क्या अब समझ में आ गया? ये जानकारी जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन ने दी थी।
1: हाँ बिल्कुल, इस दिन का संदेश ये है कि अब पानी सिर्फ सरकार की योजना नहीं, ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है। सब मिलकर इसकी देखभाल करेंगे आज, कल और आने वाले वर्षों तक। लेकिन ये बताओ, ये कैसे जांचेंगे कि योजना अब हैंडओवर के लिए तैयार है? क्या क्या करना होगा?
3: योजना को गांव को सौंपने से पहले यह देखा जाता है कि पानी समिति बनी है या नहीं, क्या योजना को कुछ दिन चलाकर जांचा गया है, पानी सही है या नहीं, इसकी जांच हो चुकी है, नल जल मित्र और समिति को काम की जानकारी दी गई है, पूरे सिस्टम की जमीनी जांच हो गई है और सब जानकारी गांव में खुले में लगाई गई है, जल चौपाल करके गांव वालों को जोड़ा गया है और जल स्रोतों की सफाई भी हो चुकी है। जब यह सब पूरा होता है तभी योजना गांव को सौंपी जाती है।
1: अरे वाह, ये तो बताओ कि इसे कैसे मनाएंगे?
3: इसे एक सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसे हम अपनी स्थानिक लोक परंपरा के हिसाब से मना सकते हैं। सोर्स टू टेप समुदाय के साथ मिलकर ट्रांसेक्ट वॉक यानी जल परिक्रमा की जाए, गांव के स्कीम का नक्शा और जल गुणवत्ता रिपोर्ट सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित की जाए और जल योजना संरचनाओं पर हम पवित्र धागा बांधकर, जल बंधन धागा बांधकर सुरक्षा का संकल्प, हम अपनी योजना एवं जल स्रोत की रक्षा करेंगे, साथ में जल संरक्षण की आदतों को अपनाएंगे एवं उपाय भी करेंगे। इसी दिन योजना से जुड़ी सारे दस्तावेज पंचायत को हैंडओवर भी किए जाएंगे। ये ध्यान रहे, इसे अपनी स्थानिक संस्कृति के अनुसार मनाया जाए। इस दिवस हर गांव को अपने माननीय सांसद एवं स्थानिक मंत्री प्रवासी ग्रामीणों को जरूर बुलाना चाहिए, अन्य जनप्रतिनिधियों एवं इसके अलावा सभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम जल उत्सव भी मना रहे हैं।
1: जल उत्सव? ये जल उत्सव आखिर है क्या?
3: बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जल उत्सव 3 स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है ताकि हर व्यक्ति इससे जुड़ सके।
1: 3 स्तर? जरा आसान भाषा में समझाओ ना।
3: हाँ बिल्कुल। सबसे पहला है राष्ट्रीय स्तर का जल महोत्सव। यह हर साल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से 22 मार्च विश्व जल दिवस तक मनाया जाता है।
1: अच्छा, यानी पूरे देश में एक साथ पानी को लेकर जागरूकता और भागीदारी का माहौल बने।
3: बिल्कुल सही। इसमें देश भर में कार्यक्रम, संवाद, सम्मान समारोह और जन भागीदारी के आयोजन होते हैं ताकि पानी को लेकर सामूहिक जन जागरूकता का माहौल बने।
1: और दूसरा स्तर कौन सा है?
3: दूसरा है राज्य स्तर का, राज्य जल उत्सव या नदी उत्सव। इसमें हर राज्य अपनी नदियाँ, जल परंपराओं और स्थानिक संस्कृति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करता है।
1: मतलब हर राज्य अपने हिसाब से अपनी पहचान के साथ जल उत्सव मनाता है।
3: हाँ, जैसे कहीं नदी है किनारे कार्यक्रम, कहीं जल संरक्षण अभियान, तो कहीं स्थानीय त्योहारों के साथ इसे जोड़ा जाता है।
1: और तीसरा स्तर?
3: तीसरा और सबसे अहम है गांव एवं पंचायत स्तर का लोक जल उत्सव।
1: ये तो सबसे जरूरी है क्योंकि असली काम तो गांव में ही होता है।
3: सही कहा। ऐसे जल उत्सव में जल चौपाल भी होती है। गांव के लोग मिलकर अपनी जल योजना की समीक्षा करते हैं और यदि कोई कमी हो तो उसे ठीक कर अपनी सेवा को और बेहतर बनाते हैं। पानी के स्रोतों की सफाई की जाती है और सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि योजना को टिकाऊ बनाएंगे।
1: मतलब देश से लेकर गांव तक हर स्तर पर पानी को एक उत्सव, एक जिम्मेदारी और एक जनभागीदारी के रूप में जोड़ा गया है।
3: बिल्कुल, जल उत्सव का मतलब सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि यह है जनभागीदारी से जल की जिम्मेदारी।
1: बिल्कुल, और हमने इसके लिए जल अर्पण दिवस के दौरान सम्मिलित गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी और राजगढ़ के सांसद श्री रोडमल नगर जी से बात की। आइए जाने क्या कहते हैं वे इनके बारे में।
8: धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी, धन्यवाद जल शक्ति मंत्रालय सीआर पाटिल साहब, धन्यवाद पूज्य योगी महाराज। एक ऐसी सोच जो मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ बिकॉज मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ। पानी जो आने वाले समय पे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि कम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा धरती पर, अब उसको बचाना, उसको संजो करके रखना और वहां पर पानी की व्यवस्था, हर घर में नल से जल देने की व्यवस्था, ये बहुत बड़ी सोच थी। ये इम्पॉसिबल जैसा था, इम्पॉसिबल जैसा, लेकिन मैंने इसको पॉसिबल होते हुए अपने छह संसदीय क्षेत्र में देखा। 2,25,000 लीटर की टंकी लगी, ऑटो मशीन पर पानी हर घर में आ रहा है, कितनी खुशी थी। ये खुशी का कोई मापदंड नहीं।
9: जल जीवन मिशन का जो काम है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है हर घर नल से जल, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सराहना करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और राजगढ़ जिले में भी 1331 के लगभग गांव ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन्होंने लिए हैं। ये ठीक है कुछ व्यवधान रहे, उसकी वजह से कुछ लेट लतीफ हुई है, लेकिन बहुत ही प्रशंसनीय है। कुंडीबे गांव में तो 24x7 24 घंटे नल से जल प्रदाय हो रहा है और वहां की जो पद्धति को हमने देखा और वहां से जो हमने सीख ली वो भी बड़ी अनुकरणीय है। सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि नल की टोटी निकाल देते हैं तो पानी व्यर्थ में बहता रहता है, लेकिन कुंडीबे ग्राम पंचायत के लोगों की मैं सराहना करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। हर नल में उन्होंने टोटी लगा रखी है और मैं एक दिन गांव में गया, मैंने टोटी चालू कर दी और लोगों की तरफ देखा तो लोग हंसने लगे। मैंने कहा बस मैं यही चाहता था कि टोटी बंद रहनी चाहिए और ये आप अपनी तरफ से हमारे साथ में खड़े हैं। ये बड़ा ही अच्छा एक वातावरण था, बड़ा अच्छा क्षण था। और अच्छा है जल जीवन मिशन के माध्यम से जैसा कुंडीबे हुआ है वैसे अन्य गांव भी हो और जल्दी से जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हर घर नल से जल, इसको देने में हम सफल होंगे। जल जीवन मिशन का काम है गांव तक पानी पहुंचाना, लेकिन गांव का वितरण करना है तो ग्राम पंचायत का ही काम है, इसके लिए जन संगठनों को आगे आना पड़ेगा। देखिए जो काम करता है वहां गलतियां होती है, चूक भी होती है, कमियां भी रहती है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का और हम सब आपके साथ हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
5: गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी और राजगढ़ मध्य प्रदेश के सांसद से बात अभी हमने अपने श्रोताओं को सुनवाई, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। सुजल ऐसा लगता है जल अर्पण दिवस और जल उत्सव संस्कृति और जिम्मेदारी का संगम है। इसके अलावा आओ अब ये जानते हैं कि जल जीवन मिशन में कौन कौन सी डिजिटल प्रणालियां विकसित की हैं।
0: पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय अपनी पेयजल व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकें एवं चला सकें, इसके लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियां विकसित की है। उसमें सबसे प्रमुख है पंचायत डैशबोर्ड। पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पंचायत डैशबोर्ड बनाया गया है। इसके माध्यम से सरपंच और मुखिया जी योजनाओं की प्रगति, बनी हुई जल संरचनाएं, पानी की गुणवत्ता और प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी देख सकते हैं और अपनी राय व सुझाव भी दे सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है सुजलाम डाटाबेस। इसके माध्यम से हर पाइप पेयजल योजना की जानकारी स्रोत से लेकर नल तक एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जल आपूर्ति योजना और प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट पहचान यानी सुजल गांव आईडी प्रदान की जा रही है, जिससे योजना की निगरानी, प्रबंधन और सेवा वितरण को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके। इसके माध्यम से आप अपने गांव की पेयजल योजना की जानकारी जल स्रोत से लेकर नल तक योजना के सभी घटकों को देख पाएंगे। योजना से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारियां भी इसमें उपलब्ध होंगी। तीसरा महत्वपूर्ण पहल है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम निर्णय सहयोग प्रणाली कहते हैं, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि पानी रहेगा तभी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। हर योजना का भविष्य उसके जल स्रोत की सुरक्षा पर निर्भर करता है। यह प्रणाली हमारे परंपरागत स्थानीय ज्ञान, जो सदियों से जल के साथ हमारे अनुभव से विकसित हुआ है, को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ती है। इस समन्वय से हमें बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जिससे हम अपने जल स्रोतों को रिचार्ज कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रह सकते हैं, ताकि आज नल तक पहुंचने वाला पानी कल और आने वाली पीढ़ियों तक भी बना रहे।
1: गोरखपुर के माननीय सांसद और राजगढ़ के सांसद से बात अभी हमने अपने श्रोताओं को सुनवाई, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। सुजल, ऐसा लगता है कि जल अर्पण दिवस एवं जल उत्सव संस्कृति और जिम्मेदारी का संगम है। इसके अलावा आओ अब ये जानते हैं कि जल जीवन मिशन में कौन कौन सी डिजिटल प्रणालियां विकसित की है।
0: पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय अपनी पेयजल व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकें एवं चला सकें, इसके लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियां विकसित की है। उसमें सबसे प्रमुख है पंचायत डैशबोर्ड। पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पंचायत डैशबोर्ड बनाया गया है। इसके माध्यम से सरपंच और मुखिया जी योजनाओं की प्रगति, बनी हुई जल संरचनाएं, पानी की गुणवत्ता और प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी देख सकते हैं और अपनी राय व सुझाव भी दे सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है सुजलाम डाटाबेस। इसके माध्यम से हर पाइप पेयजल योजना की जानकारी स्रोत से लेकर नल तक एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जल आपूर्ति योजना और प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट पहचान यानी सुजल गांव आईडी प्रदान की जा रही है, जिससे योजना की निगरानी, प्रबंधन और सेवा वितरण को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके। इसके माध्यम से आप अपने गांव की पेयजल योजना की जानकारी जल स्रोत से लेकर नल तक योजना के सभी घटकों को देख पाएंगे। योजना से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारियां भी इसमें उपलब्ध होंगी। तीसरा महत्वपूर्ण पहल है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम निर्णय सहयोग प्रणाली कहते हैं, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि पानी रहेगा तभी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। हर योजना का भविष्य उसके जल स्रोत की सुरक्षा पर निर्भर करता है। यह प्रणाली हमारे परंपरागत स्थानीय ज्ञान, जो सदियों से जल के साथ हमारे अनुभव से विकसित हुआ है, को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ती है। इस समन्वय से हमें बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जिससे हम अपने जल स्रोतों को रिचार्ज कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रह सकते हैं, ताकि आज नल तक पहुंचने वाला पानी कल और आने वाली पीढ़ियों तक भी बना रहे।
1: तैयारी पक्की, जिम्मेदारी सबकी। हम पानी बचाएंगे, योजना चलाएंगे, गांव का जल भविष्य बनाएंगे।
10: मैं आज समझ गई, सबसे ताकतवर गांव वो है जो पानी की रक्षा करता है। अब मेरा क्या होगा?
11: तैयारी पक्की, जिम्मेदारी सबकी। हम पानी बचाएंगे, योजना चलाएंगे, गांव का जल भविष्य बनाएंगे।
12: मैं आज समझ गई, सबसे ताकतवर गांव वो है जो पानी की रक्षा करता है। अब मेरा क्या होगा?
0: मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। साथियों, ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले टाइड ग्रांट जल एवं स्वच्छता के कार्यों के लिए निर्धारित है। इस राशि का उपयोग गांव की पेयजल योजनाओं की देखभाल, मरम्मती, जल गुणवत्ता जांच, जल संरक्षण और लोक जल उत्सव, जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे गतिविधियों में किया जा सकता है। इससे पेयजल योजनाएं लंबे समय तक सुचारू रूप से चलती रहेंगी और ग्राम पंचायत के सहयोग से लोगों को बेहतर पेयजल सेवा मिलती रहेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाइप जल आपूर्ति योजना से मिलने वाला साफ और सुरक्षित पीने का पानी केवल सुविधा नहीं है, बल्कि यह बेहतर स्वास्थ्य की बुनियाद है। इससे डायरिया, पीलिया और अन्य जल जनित बीमारियों में कमी आती है, बच्चों और गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य सुधरता है और परिवारों का इलाज पर होने वाला खर्च भी घटता है। स्वस्थ परिवार मतलब कामकाज में कमी नहीं, आमदनी में नुकसान नहीं। इसलिए पाइप नल योजना के माध्यम से मिलने वाला साफ पानी गांव की तरक्की की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, चूंकि मानसून अपने चरम पर है और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि वर्षा जल का एक एक बूंद हमें बचाना चाहिए, मेरा सबसे आग्रह है कि पानी का समझदारी से उपयोग करें और बर्बादी से बचें। साथ ही जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के रिचार्ज की तैयारी करें ताकि हमारे पेयजल स्रोत साल भर टिकाऊ बने रहें। आइए हम सब मिलकर सरकार और समुदाय की साझा जिम्मेदारी निभाएं, अपनी पाइप पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखें, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि हर घर तक सुरक्षित और नियमित पानी पहुंचता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
1: सुजल, अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की ओर जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले अंक का सवाल था, गीला कचरा और सूखा कचरा की श्रेणी में किन किन चीजों को रखा जाता है और इन्हें रखने के लिए किस रंग के कूड़ेदान होते हैं? तो इस सवाल का जवाब है, गीला कचरा, इसमें क्या क्या आता है? सब्जियों, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, चाय पत्ती, कॉफी के अवशेष, अंडे के छिलके, फूल पत्तियां आदि। और सूखे कचरे में आता है कागज, गत्ता, प्लास्टिक की बोतलें, पैकेट, डिब्बे, कांच, धातु इत्यादि आदि वस्तुएं। तो याद रखने की आसान ट्रिक है कि हरा डब्बा यानी गीला कचरा, नीला डब्बा यानी सूखा कचरा। तो यही सही जवाब हमें भेजा है गोरखपुर से रमेश जी पटना, इन्होंने सही जवाब भेजा है हमें। उसके बाद दो नंबर पे है ऋषि पडलवार, जिनका गांव है शेंदुरनी, यहां से इन्होंने हमें सही जवाब भेजा है। सभी को अभिनंदन। इस अंक का सवाल

0: ग्राम बनाने हेतु क्या प्रयास कर रहा है और क्या रहेगी उनकी रणनीति। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और सुनिए स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: अगले अंक तक अब सभी को हमारा नमस्कार।

0: मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा संचालित, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साथो। दोस्तों, दुनिया में जब किसी व्यक्ति की सांसें रुक जाती हैं, दिल धड़कना बंद कर देता है और शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो घर परिवार और समाज में कोहराम मच जाता है। लोग रोने लगते हैं, अर्थी सजाई जाती हैं और सब कहते हैं कि अरे, अमुक व्यक्ति का देहांत हो गया, वह मर गया। यह शरीर की वह मृत्यु है जिसे हर कोई अपनी आँखों से देख सकता है और जिसके लिए सब शोक मनाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या केवल सांसों का रुकना ही मरना है? अगर कोई इंसान चल फिर रहा है, खा पी रहा है, लेकिन उसके भीतर का विवेक मर चुका है, उसकी करुणा खत्म हो चुकी है, वह ईर्ष्या, नफरत और लालच के दलदल में एक जिंदा लाश की तरह जी रहा है, तो क्या वह सचमुच जीवित है? कबीर साहब आज हमें उसी अनदेखी और सूक्ष्म मृत्यु का आईना दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी सूत्र। प्राण पिंड को ताजी चले, मुवा कहे सब कोई। प्राण पिंड को ताजी चले, मुवा कहे सब कोई। जीव आछत जामे मरे, सुषमी लखे न कोई।

रे सुशिमला खे न कोय रे साधो सुशिमला खे न कोय। श्रोताओं, कबीर साहब संसार की अधूरी समझ पर गहरी चोट करते हुए कहते हैं, प्राण पिंड को ताजी चले। जब इस नश्वर शरीर से प्राण यानी वायु, प्राण वायु और जीवन ऊर्जा इस पिंड हाड़ मांस के पुतले को छोड़कर निकल जाती हैं, मुआ कहे सब कोई, तब तो इस दुनिया का सब कोई यानी हर व्यक्ति छाती पीट कर रोता है और कहता है कि यह मनुष्य मुआ यानी मर गया। इससे सब पहचान लेते हैं। लेकिन कबीर अगली पंक्ति में जीवन के सबसे भयानक यथार्थ की ओर इशारा करते हैं, जीव आछत जामे मरे। जब जीव आछत यानी प्राणों और जीवन के रहते हुए भी, सांसें चलते हुए भी, मनुष्य अपने भीतर की आत्मा, अपने होश और अपने सद्गुणों को खोकर जामे मरे यानी अज्ञान और विकारों में जीते जी मर जाता है। सुषिम लखे न कोई, तो उस सुषिम यानी अति सूक्ष्म आत्मिक मृत्यु को देखने और समझने वाला संसार में कोई नजर नहीं आता। लोग जिंदा लाशों की तरह घूम रहे हैं, पर कोई इस पर रोने वाला नहीं है। यह दोहा जागृत जीवन और आत्मविस्मृति का महासूत्र है। कंठोपनिषद में भी कहा गया है कि जो केवल इंद्रियों के पीछे भागता है, वह मृत्यु के फंदे में फंसा हुआ है। उसकी असली जीवन केवल सांसों का आना जाना नहीं है, असली जीवन तो होश और आत्मबोध का नाम है। जब मनुष्य का विवेक सो जाता है और वह केवल वासनाओं की कठपुतली बनकर जीता है, तो वेदांत की दृष्टि में वह मृत्यु तुल्य ही है। कबीर समझा रहे हैं कि देह का छूटना तो प्रकृति का स्वाभाविक नियम है, लेकिन जीते जी अपनी चेतना को मार देना सबसे बड़ा आत्मघात है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर खुद से यह सच्चा सवाल पूछिए कि क्या हम सचमुच जीवित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, नफरत और चिंताओं में दिन बिताते हैं, केवल सांस लेने को ही जिंदगी मान बैठे हैं? क्या हमारे भीतर का प्रेम, करुणा और परमात्मा की याद आज भी जागृत है? आज कोशिश कीजिए इस भीतरी मूर्छा से जागने की। अपने भीतर उस राम नाम के अमृत का संचार कीजिए जो सोई हुई चेतना को पुनर्जीवित कर देता है। जब आपके भीतर विवेक, प्रेम और शांति की सांसें चलेंगी, तब आप सही मायनों में जीवित कहलाएंगे और देह के छूटने के बाद भी आपकी आत्मा सदा के लिए अमर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए

नमस्कार, ओम शांति। दुरितांसे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछी रतो ते लाहो प्राणी जात। दुरित क्या है, तिमिर क्या है, इसके ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की। तिमिर अंधेरा, रात, और ये रात जो है वो कब खत्म होगी उसके इंतजार में बहुत सारे आत्माएं, हम लोग कभी कभी बहुत बार सोचते हैं कि ये रात खत्म कब होगी। देखिए, शायर लोग जो होते हैं वो भी रात को बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते हैं, रात का। संत लोग जो है वो भी वर्णन करते हैं। हर एक का कवि जो है अपनी अपनी भावना के अनुसार रात का वर्णन करता है। रात अच्छी है या बुरी है? रात अच्छी भी है और बुरी भी है, क्योंकि देखिए हमारे जो कहावतें हैं, हम जो कहते हैं, हम जो बोलते हैं, वो भी मुझे लगता है आध्यात्मिक स्वरूप से बोलते हैं। रात में अगर कुछ दुष्कर्म होता है तो हम मान लेते हैं, लेते नहीं लेते? रात में अगर दुष्कर्म होता है तो मान लेते हैं, कोई बुरी बात कहता है तो भी हम सह लेते हैं। लेकिन अगर सुबह सुबह उठ के कोई बुरी बात कहता है तो हम क्या कहते हैं? सुबह सुबह अशुभ मत बोलो, सुबह सुबह ऐसी बातें मत करो। मीन्स सुबह जो है वो आशा है, रात जो है वो निराशा है, और इसे निशा भी कहते हैं रात को। तो ये रात जो है वो तो दिन में है, हर दिन में दिन भी आता है, रात भी आती है, और वो चक्र शुरू है। अगर ये चक्र दिन और रात का शुरू है तो युगों का भी चक्र शुरू होगा। हम तो कहते हैं साइकिल, टोटल साइक्लिक वर्ड है, लीनियर है ही नहीं। साइक्लिक वर्ड है, वर्ल्ड है, लीनियर है ही नहीं, और इसलिए विश्व। और इसलिए जब भी सुबह होती है, सुबह का प्रहर भी, उसे राम प्रहर कहा जाता है। राम प्रहर, रावण प्रहर नहीं। आजकल क्या हो गया है, हमारा रामायण सीरियल शुरू हो गया। देखने के बाद मुझे आश्चर्य लगा कि राम के बजाय रावण हिट हो गया, रावण हीरो बन गया। रावण के ऊपर व्हाट्सएप पे जोक भी आते हैं, उसमें ये भी कहते हैं रावण ने बहुत अच्छा काम किया। रावण ब्राह्मण था, रावण पंडित था, है बिल्कुल सही है। क्योंकि रावण जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में, रावण एक संकल्पना है, और वो रावण जो है वो माया है, मायावी रावण। तो ऐसा रावण सारे विश्व में भरा हुआ है, हर एक के मन में भरा हुआ है, और हर एक के मन में राम भी है। वो मन में जो राम है वो सुबह जागृत होता है, और राम प्रहर में इसलिए हम कहते हैं कि अशुभ मत बोलो, शुभ बोलो। तो ये दुरितांसे तिमिर, तिमिर के ऊपर हमने अभी चर्चा कर रहे थे। तो ये तिमिर जब जाएगा, कब जाएगा? जब सूर्य आएगा। और इसलिए दूसरा जो चरण है या दूसरा आधा चरण है, दुरितांसे तिमिर जावो, जावो ठीक है जाए, लेकिन विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो। विश्व स्वधर्म और सूर्य कितना कहे है, कितना बोले उतना कम है। ये विश्व जो है, ये विश्व ची माझे घर, हे विश्व ची माझे घर, सारा विश्व जो है वो मेरा घर है।
बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, ये सारे विश्व में जो बांधव है, सारे विश्व में जो लोग है वो मेरे बांधव है। भारतीय संस्कृति कितनी विशाल है देखिए। संत ज्ञानेश्वर माउली ने कभी ये नहीं सोचा मेरे आळंदी के लोग खुश हो रहे हैं, मेरे पूना के लोग खुश रहे, मेरे महाराष्ट्र के लोग खुश रहे, मेरे भारत देश के लोग खुश रहे, नहीं। उन्होंने मांगा सारे विश्व के लिए, और ये विश्व जो है वो विश्व अपने मुट्ठी में बंद हो जाता है जब हमारा मन विशाल होता है, हमारा दिल विशाल होता है। और ये अच्छी तरह से सच्चा अध्यात्म, सच्चा परमात्मा का प्यार समझ में आता है जब मेरा मन विशाल हो जाता है। तो ये विश्व जो है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, स्वधर्मे और सूर्य और पाहो। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये पसायदान का जो अर्थ है वो अगर शब्दार्थ कहे तो 5 मिनट 10 मिनट में पूरा हो जाता है। सागर जो है वो आप सागर के किनारे बैठ जाओ, थोड़ा सा पैर अंदर डालो, पैर गीले कर दो, हो गया समुद्र स्नान। या सागर की लहरें जो आती है उनके साथ खेलो, डेप्थ में जाओ, डुबकी मारो, क्या मजा आएगा। फिर भी सागर पूरा नहीं होता है, या ऐसा ज्ञान है, या ऐसा प्यार है परमात्मा का, वो इतना महान है, इतना गहन है कि कितनी भी डुबकी मारो मिठास बढ़ती ही जाती है। और ये मिठास जो मिलती है चिंतन में, वो आपके साथ शेयर करने में बड़ा मजा आता है। ये एपिसोड मैंने सोचा था कि विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, उसका कुछ विवेचन चिंतन करे, लेकिन अभी तक हम विश्व स्वधर्म और सूर्य के यहां पहुंचे नहीं है, क्योंकि रात ही पूरी नहीं हो रही है। हम लोग कहते हैं कि रात पूरी कब होगी, दिन कब आएगा, इंतजार है। और कई लोग कहते हैं होगी ही नहीं, होगी या नहीं होगी, होगी जरूर होगी, और उसी समय होगी जिस समय होना है। और ये रात जो है, या भारतीय संस्कृति के अनुसार अंधेरा रहता है, 3-3:30 बजे भी अंधेरा रहता है, लेकिन उस अंधेरे में काम अच्छे करने होते हैं। सुबह का समय है बोलते हैं, राम प्रहर का समय है जिससे मराठी में पहाट बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छी चीजें करनी होती है, परमात्मा चिंतन करना होता है और अपनी जिंदगी बनानी होती है। और यही कार्य हम सब लोग मिलके कर रहे हैं, करेंगे। और फिर अगले एपिसोड में हम विश्व स्वधर्म और सूर्य उसके ऊपर चिंतन करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।

नमस्कार, ओम शांती। दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। ये ओवी, ये स्टांजा, ये लाइनर, इसके ऊपर हमारा चिंतन शुरू है। सातवें एपिसोड में, सातवें भाग में हमने दुरित क्या है, तिमिर क्या है, अंधेरा, उसके बारे में चर्चा की। थोड़ा सा विश्व क्या है उसको स्पर्श भी किया। अभी आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो। जब भी मैं पसायदान सुनता था या सुनता हूं कभी भी, तब मुझे हमेशा लगता है कि ये पंच लाइन है, विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो। तीन शब्द है, विश्व, स्वधर्म और सूर्य। कौन देखेगा? एक्चुअली ये पंच लाइन का जब आजकल बहुत व्हाट्सएप पे भी पसायदान का मराठी अर्थ आता है, उसमें मैंने देखा कि सारा विश्व जो है वो स्वधर्म रूपी सूर्य से देखे, सूर्य के प्रकाश में देखे, ऐसा कुछ अनुवाद है। विश्व जो है वो स्वधर्म के सूरज जो है उसके प्रकाश में देखे। लेकिन जब मैंने ये अर्थ सुना या पढ़ा, तब मुझे लगा कि माउली को और कुछ बताना है उसमें से। इतना आसान नहीं है, विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, विश्व स्वधर्म के सूर्य के प्रकाश में क्या देखेगा, किसको देखेगा, और स्वधर्म का सूरज जो है उसका प्रकाश कैसे आएगा। ऐसे कुछ प्रश्न मन में उठे थे और इसलिए मुझे लगा कि और उसमें गहराई से चिंतन होना चाहिए और माउली को क्या अभिप्रेत है इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। शायद ये तो मेरा विचार है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप ज्ञानी हो, आप समझदार हो, आप उसके ऊपर चिंतन करिए और डिसाइड करिए। तो विश्व, जो माउली ने शब्द प्रयोग किया विश्व, उसके ऊपर जब मैं चिंतन करता था, तब एक्चुअली विश्व स्वधर्म में सूर्य पहो, जो कुछ पसायदान में माउली ने मांगा है वो सब भलाई के लिए मांगा है। तो विश्व और जगत फर्क है। जगत मीन्स अर्थ, और जगत का बहुत अच्छा मतलब भी है, जिसको गति है ऐसा जगत। अर्थ जो है वो घूमती है, जगत जो है वो अर्थ, और फिर विश्व क्या है। मुझे लगता है जगत और विश्व में फर्क है। जगत इज कन्फाइंड टू अर्थ, और ये पृथ्वी पे जो कुछ जीव जीवाणु, जो कुछ जिंदगी है, जीवन है, उससे ही लिमिटेड है, उतना ही लिमिटेशन है। लेकिन विश्व में अनलिमिटेड है। उसमें कितने तारे होंगे, कितने सोलर सिस्टम्स होंगे, उसमें अफाट है, अगणित है, अनलिमिटेड है। और ये अनलिमिटेड जो है वही मांगा है माउली ने। जगत नहीं, जगत का शब्द प्रयोग नहीं किया माउली ने, शब्द प्रयोग किया है विश्व का। और ये विश्व में जो ग्रह है, और हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ये ग्रहों का भी प्रभाव होता है, सोचते हैं ना, इसलिए तो आजकल नवग्रह की अंगूठी है, अनग

इफेक्ट होगा। तो यह अलाइनमेंट जो है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, यह शायद ज्ञानेश्वर जी को, माउली को यह अलाइनमेंट अभिप्रेत होगी। जब यह चेंज हो जाएगा, जब नया युग आएगा, नया संसार आएगा, नई सृष्टि का निर्माण होगा या सतयुग का निर्माण होगा, तब ये सब ग्रह जो है वह अलाइंड होंगे। आपको लगता है? क्योंकि इसी के ऊपर मुझे एक कथा याद आई जो रामायण की कथा है। जब रावण जब थे, रावण तो काफी पढ़े लिखे थे, ऐसे माना जाता है कि रावण दशग्रंथी ब्राह्मण था, विद्वान था, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन फिर भी उसका गायन नहीं होता है। क्यों? गलत फैसला किया, मोह को जीत नहीं पाया। और यही रावण जो है, ये इतना बड़ा भक्त था और उसने शिवजी से कुछ वर मांगा। और फिर ऐसी कथा है कि उसने क्या किया थे कि ये नवग्रह जो है उनका, उन्होंने पहिए बनाए थे, पहिए मीन स्टेप्स, और जब वो सिंहासन पे बैठ जाता था तब ये पहियों के ऊपर पैर रख के, मीन्स नवग्रहों के ऊपर पैर रख के वो सिंहासन पे जाके बैठ जाता था। नारद जी देख रहे थे, हैरान हो गए। नारद जी नवग्रह के साथ पास आए और उन्होंने बताया कि आप तो मनुष्य की जिंदगी के ऊपर इतना प्रभाव डालते हैं, आप इतने पावरफुल हो, और ये रावण आपके ऊपर पैर रख के चला जाता है, आप कुछ क्यों नहीं कर सकते? तब उन्होंने कहा कि अभी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पीठ के ऊपर रावण पैर रखता है। अगर वो हमारे सीने के ऊपर पैर रखे तो हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाएगी और फिर उसका पतन शुरुआत हो जाएगा। अभी नारद जी तो है ही, आपको मालूम है नारद जी काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। तो नारद जी रावण के पास आए, और उन्होंने रावण को बताया कि हे रावण महाबली, आप बहुत बलवान हो और आप बहुत तेज भी हो, आपने पूरे नवग्रह जो है उनके ऊपर पीठ के ऊपर पैर डाल के आप चढ़ते हो, लेकिन मुझे ये लगता है ये पीठ के ऊपर क्यों पैर डालना है? अगर सचमुच ही आपको अपनी ताकत दिखानी है तो एक्चुअली उनके छाती के ऊपर पैर रखना चाहिए। रावण को बात जची, उसने बोला बिल्कुल नारद जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं इतना महाबली हूं कि नवग्रहों की पीठ के ऊपर क्यों मैं छाती के ऊपर पैर रखूंगा। क्या हो गया? रावण ने क्या किया, जो नव ग्रह थे उनको पलटा दिया और छाती के ऊपर पैर रख के जाने लगा और उनकी दृष्टि पड़ गई रावण के ऊपर और उनका पतन शुरुआत हो गया। इसलिए हम बोलते हैं दृष्टि में बहुत ताकत है। दृष्टि में जैसी ताकत है, बुरी भी है अच्छी भी है। हम बड़े बड़े संतों के पास जाते हैं, ज्ञानियों के पास जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी एक दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो हम धन्य हो गए, जाते हैं ना? और हमें अनुभव ही होता है कि ये ऐसे व्यक्ति है जिनकी दृष्टि में बहुत मिठास है, बहुत खिंचाव है, बहुत प्यार है, बहुत सुकून है, बहुत शांति है। और कई लोग ऐसे भी मिलते हैं कि जिनके दृष्टि देखते ही हमें लगता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, उनकी नजर ठीक नहीं है, इसलिए बोलते बुरी नजर और अच्छी नजर। तो ये जो कहने का भाव ये था कि विश्व जो है ये नवग्रह भी है और पृथ्वी भी है और सब एक दूसरे से अलाइंड है विश्व। अब ये हमारा क्या है? स्वधर्म सूर्य पाहो। स्वधर्म क्या है और सूर्य क्या है? धर्म को हमने गलत तरीके से पेश किया है। हम धर्म कहते हैं तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म और अधर्म

उसका सही मतलब क्या है, धर्म क्या है और स्वधर्म क्या है, उसके ऊपर भी बहुत गहरा चिंतन करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम सूरज, विश्व स्वधर्मे सूर्य बहो, विश्व के ऊपर थोड़ा कुछ चिंतन किया हमने, अभी अगले एपिसोड में हम स्वधर्म क्या है इसके ऊपर करेंगे, और फिर सूर्य क्या है उसके ऊपर करेंगे, और तीनों को हम इकट्ठा करेंगे तो फिर माउली को क्या चाहिए, उनका विजन क्या चाहिए, क्या था, इसके ऊपर हम कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स, जीवन को जीने की कला हम सीख रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं इस श्रृंखला में। आज बात करते हैं खाने की। आजकल एक बहुत जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बहुत चर्चा होती है, बहुत सारे आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं कि यू आर वॉट यू ईट, आप वो हैं जो आप खा रहे होते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि आप उस पर ध्यान दें जो आप खा रहे हैं, या ये देखें कि आपको क्या खा रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे खान पान से जुड़ी हुई हैं। आज इस पर बात करेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बात खाने की करते हैं कि सारे एस्पेक्ट्स लिए, लेकिन आजकल जो बहुत फोकस भी किया जाता है कि खा क्या रहे हैं और खाने को कैसा, और इस कारण काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, क्या जो हम खा रहे हैं पूरे दिन में खाते हैं, उसका हमारी डाइट का, हमारे खाने का हमारे थॉट्स पर, हमारी बॉडी पर तो पड़ता है असर, हमारे मन पर भी पड़ता है?
2: डेफिनेटली मन पर उसकी इमीडिएट इफेक्ट है, क्योंकि जो खाते हो उसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें वाइब्रेशंस भी है। दो प्रकार के वाइब्रेशन, एक तो खाने में जो उस चीज में वाइब्रेशंस है वह भी है, और दूसरा जिस व्यक्ति ने वो भोजन बनाया है उसके भी वाइब्रेशन उसमें है। तो दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस आप ले रहे हो, अगर वो वाइब्रेशंस अच्छे नहीं है, जैसे खाने में लो एनर्जी है, तो आपको भी वह जो रियल एनर्जी है वो नहीं मिलेगी, बल न्यूट्रिएंट्स मिल गए। और दूसरा जो बनाने वाला व्यक्ति है उसने अगर निराशा में खाना बनाया है ना, ईर्ष्या में खाना बनाया है, तो उसी प्रकार के वाइब्रेशंस आपको भी मिलेगी और आप पर भी उसकी इफेक्ट होगी।
0: हम बनाने वाले को नहीं रोक पाते हैं कई बार। अब इस पर वाइब्रेशंस की जहाँ बात आती है, शिवानी, रियली नीड टू नो कि खाने पीने की चीज़ें जो मेरी बॉडी के साथ थी, यू नो, बॉडी को ताकत दे रही थी, या वो सारे विटामिन्स जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वहाँ तक सीमित थी, अब वो मेरे माइंड को कैसे कैसे अफेक्ट कर रही है?
3: हम सब के जीवन में ये अनुभव है और हम सब ने इस डिफरेंस को देखा है कि आप एक पर्टिकुलर मील को लें, वही दाल रोटी सब्जी आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके खाएं, वही पर्टिकुलर मील आप घर में लेकिन एक माँ के हाथ से बना हुआ खाएं, और वही पर्टिकुलर मील आप किसी बहन के हाथ से खाएं जिसको आपने हायर किया हुआ, जो आपके घर में आती है, खाना बनाती है, लेकिन काम के लिए, पैसे के लिए वो खाना बनाती है, और वही खाना आप मंदिर या गुरुद्वारे में प्रसाद के रूप में खाएं। चारों में जो आपको भावना है, जो फीलिंग है, जो एनर्जी है, वो डिफरेंट महसूस होगी, क्योंकि चारों को बनाते समय जो भावना है इट इज़ टोटली डिफरेंट। रेस्टोरेंट में जो खाना बनता है इट्स फॉर प्रॉफिट, आप जितना खाएंगे जितनी बार लेंगे उनका प्रॉफिट बढ़ता जाता है, दे आर सर्विंग यू विद दैट इंटेंशन। मदर जो खाना बना रही है इट्स फुल ऑफ लव अटैचमेंट। जो मेड जो आपके घर काम करती है वो खाना बना रही है, आप उसको बोल दो एक चपाती और खानी है, तो उसकी थॉट प्रोसेस कैसे चलनी है, अभी एक और खानी है इन्होंने, क्योंकि उसको पैसे तो उतने ही मिलने हैं। सी, उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है अगर आप और लोगे, लेकिन उसकी काम करना उसको ज्यादा पड़ रहा है। शी डजंट लाइक दैट एनर्जी, हर एनर्जी इज डिफरेंट। और इसी को आप गुरुद्वारे मंदिर में खाएं तो भावना ही अलग है कि भगवान के कार्य के लिए ये भोग बन रहा है, भगवान के बच्चे आकर ये खाना खाएंगे। चारों में फीलिंग एकदम डिफरेंट आती है, ओनली बिकॉज कॉन्शियसनेस ऑफ द वन हु वाज कुकिंग इज डिफरेंट इन ऑल फोर केसेस।
0: व्हाट वी फेल्ट, मतलब अभी तक जो ये था कि शायद हमारी भी तो भावना,
3: वो तो है,
0: हम अगर
3: हमारी
0: मंदिर जाते
3: भी भावना हैं। लेकिन बनाने वाले की भी भावना, देखो दो काम हो रहे हैं ना, बनाने वाले की भावना खाने के साथ, और फिर स्वीकार करने की भावना खाना खाते टाइम, बोथ आर वर्किंग। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग्स, द वन हु इज कुकिंग एंड देन आफ्टर दैट द वन हु इज ईटिंग। ये भी नहीं कि सिर्फ जो खाना बना रहा है उसने ध्यान दिया, जब हम भोजन ले रहे हैं उसमें भी अपनी कॉन्शियसनेस पर ध्यान देना। दोनों में बहुत अंतर, मतलब दोनों में वी विल फाइंड दैट द राइट कॉन्शियसनेस विल गिव द राइट एनर्जी टू द माइंड एंड द बॉडी।
2: कई बार आप देखेंगे कि खाने वाले को पता ही नहीं कि कहाँ बनाया गया है, कि ये प्रसाद है या घर से आया है या होटल से आया है, लेकिन वो व्यक्ति अगर सही स्टेट ऑफ माइंड में होगा तो कैच कर लेगा। मैंने स्वयं देखा है कि जब हम बहुत जगह पर जाते हैं प्रोग्राम्स के लिए, कईयों के घर में भी रहते हैं, कई बार सेंटर्स पर रहते हैं, तो बल बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वहां जाते लगता है कि यहाँ के वाइब्रेशन अच्छे नहीं है.
3: क्योंकि बहुत बार ऐसे प्रैक्टिस होने के बाद कई बार खाना खाते खाते पता चल जाता है कि हैवीनेस है. नॉट द फूड इज हैवी बट द एनर्जी, द फील के जिसने ये खाना बनाया है, सम हैवीनेस अबाउट द फूड. और किसी के हाथ का भोजन खाते हुए आपको लगेगा ये बहुत प्यार से बनाया हुआ भोजन है, बहुत इमिडिएटली पता चलता है भोजन स्वीकार. टेस्टी की बात नहीं है, कौन सा खाना ज्यादा टेस्टी ना, वो बातें नहीं है. इट्स द फील दैट यू विल गेट व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द फूड.
2: और स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, ये सभी नहीं कैच कर पाएंगे. आमतौर पर जो लगा जाता है टेंशन में जी रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट है,
0: हम खा भी किस थॉट में रहे हैं. सी हमारे पास मतलब कभी ड्राइव करते हुए खा रहे हैं, कभी गुस्से में खा रहे हैं, कभी पढ़ते हुए खा रहे हैं, कुछ लिखते हुए, मुझे याद टेलीविजन देखते हुए, मुझे याद ही नहीं पड़ता कि नॉर्मल खाने के ऊपर फोकस करके खाया गया हो. लेकिन ये कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च है डॉक्टर साहब जो बताती है कि जिस भाव से खाना बनाया गया है या खाया जा रहा है उसका आपके थॉट्स पर या आपकी बॉडी पर जो खाने का अपना प्रभाव है उससे फर्क पड़ता है?
2: एक तो जो रिसर्च हुई, इस प्रकार की रिसर्च हुई है कि थॉट्स का प्रभाव खाने पर क्या होता है. प्लांट्स पर इसकी रिसर्च की गई कि एक प्रकार के सब प्लांट्स लिए गए, जो जमीन थी वह भी एक प्रकार की थी, पानी भी एक जैसा ही उनको दिया गया. उन्होंने ये देखा कि सिर्फ जो पानी देने वाला है वो प्लांट्स पर, वह व्यक्ति डिफरेंट थे. कि कुछ तो क्रिमिनल्स को वह पानी वाटर करने के लिए दिया गया, दूसरा नॉर्मल लोगों को दिया गया, और तीसरा जो लोग बहुत भावुक थे ऐसे लोगों को वह प्लांट्स को वाटर करने के लिए पानी दिया गया. और फिर जब 4 मास के बाद उन्होंने देखा तो क्रिमिनल्स ने जिन प्लांट्स को पानी दिया था उनकी ग्रोथ सबसे कम थी. जो लोग भावुक थे, इमोशनल थे, उन्होंने जो वाटरिंग किया था उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा थी. जो नॉर्मल थी वो बीच में थी. और उसका कंक्लूजन ये निकाला क्योंकि जो भावुक थे उन्होंने भावना से यहां तक पूछा भी कि ये क्या हमें करना है, क्यों कर आप प्रयोग कर रहे हैं. और बड़ी भावना से प्यार से पानी दिया, इसलिए मैक्सिमम ग्रोथ हुई. तो इससे सिद्ध होता है कि भी सचमुच जो हम अगर प्लांट्स पर हमारे थॉट्स की इफेक्ट हो रही है तो खाने की इफेक्ट होगी होगी.
0: ओके, तो मतलब अननोइंगली हम जब खाना बना रहे, इवन आज मदर्स को भी अगर आप देखते हैं तो कई बार बहुत स्ट्रेस्ड होती हैं वो मदर्स.
3: Yeah, that's what consciousness while cooking is very important. हम तो ध्यान रखते कि अगर right consciousness नहीं है तो अभी भोजन नहीं बनाओ. Because more than good you will do damage. हम सिर्फ फिजिकल पर आज दिन तक ध्यान दे रहे थे ना कि खाना
0: हुए बना रहे होते हैं,
3: परेशान, कभी गुस्सा, कभी थके हुए, यू नो यू डोंट वॉन्ट टू कुक बट यू आर कुकिंग. तो इट्स अ वेरी यू नो अच्छी फीलिंग नहीं. और कई बार ये थॉट आती कब खत्म हो, जल्दी करूं मैं जाऊं उधर, दैट्स नॉट द राइट एनर्जी वी आर गिविंग टू द फूड. तो जो भोजन वो खाएगा उसको भी वांटेड नहीं फील होगा, बिकॉज जो दे रहा है उसने कैसी फीलिंग से दिया, जल्दी करो खत्म करो बस खाओ मेरा हो जाए काम. नॉट द राइट कॉन्शियसनेस फॉर द फूड. इवन जैसे भाई साहब ने कहा गार्डन, कोई गार्डन में है जो उधर का मालिक है वो खुद उस गार्डन को पानी देता है, आप देखो उसकी कॉन्शियसनेस कैसी है अपने पौधों के साथ. एंड कोई है जिसने माली है जो गार्डनर है, बस वो आ रहा है 15 मिनट पानी देके चला जा रहा है, यू विल फाइंड अ डिफरेंस इन द गार्डन. आप माउंट आबू आए जहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ बहुत मेडिटेशन होती है, ओवरऑल एनर्जी ही डिफरेंट है, और आप वहाँ के आकर गार्डन देखें. जो जिनको कुछ नहीं पता इस बारे में, न्यू पीपल कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी कहते हैं यहाँ के गार्डन में कुछ अलग बात है. बिल्कुल, वो लॉजिकली नहीं मालूम है कि वो अलग बात क्या है. इट इज द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस ऑन नेचर. तो ये तो बहुत सारा, अगर आप सिर्फ अवेयर होकर चलोगे ना आपको ये सारे डिफरेंसेस दिखाई देंगे. आप एक प्लांट को, लोग घर में कई लोग ये करते हैं कि अपने प्लांट्स को बहुत प्यार से वाटर करते हैं, उनसे बातें भी करते हैं कई बार, यू नो यू विल सी द ग्रोथ. एंड कोई है जो निग्लेक्टेड है, इग्नोर्ड है, यू विल सी हाउ द ग्रोथ इज. तो इसका मतलब एनर्जी डिफरेंट हो रही है ना दोनों की. अब इसी को हम कंज्यूम कर रहे, चाहे वो ग्रो करते टाइम, चाहे वो कुक करते टाइम, बात तो एक ही हो गई ना सारे.
2: ग्रोथ पर इफेक्ट हो रही है तो कुकिंग की भी इफेक्ट होगी.
0: और वो खाना बना और वो हमने खाया. ओके.
2: और ये जो बात शिवानी बहन ने बताई मैंने बहुत पहले ऑब्जर्व की थी. आज तो माउंट आबू में आप देखते हैं कि बहुत बड़ा विस्तार हो गया है, लेकिन पहले पांडव भवन बहुत छोटा सा होता था. वो ओम शांति भवन भी नहीं था, तो वहां पर हम बम्बई से कुछ भाई बहनों को ले जाते थे, वहां तब भी योग शिविर चलती थी छोटे छोटे रूप में 50-100 लोगों के लिए, और तब बम्बई से बस लेकर के जाते थे। और जब वहाँ जो जा रहे हैं लोग, साधक को तो पता था कि हम कोई आश्रम में जा रहे, लेकिन वो ड्राइवर को पता नहीं होता था, वो तो हमने बस हायर की है। लेकिन जैसे वो पांडव भवन में पहुंचते थे, ड्राइवर भी कहते अरे यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं। तो यही सिद्ध करता है कि एक व्यक्ति जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं, वह भी उसे कैच कर पाता है कि यहाँ के वाइब्रेशन कितने अच्छे हैं।
0: तो ये बात तो रही कि अगर जो खाना हम खा रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसका हमारे मन पर, मन से फिर थॉट्स पर।
3: सी ऑलवेज वी बीन टॉकिंग कि थॉट्स एनर्जी है, वाइब्रेशन है। मैं जो थॉट क्रिएट करूँगी वो आपके लिए जाएगा। अब ऐसे ही मैं वो थॉट क्रिएट किया, आपको गया। अब मैं वो थॉट क्रिएट किया जब मैं खाना बना रही हूँ, एनर्जी तो है, फूड इज ऑल्सो एनर्जी। तो वो थॉट्स, वो एनर्जी खाने के साथ है। अब मैं आपको डायरेक्टली थॉट्स नहीं दे रही, लेकिन खाने, आई एम सर्विंग इट टू यू ऑन अ प्लैटर एक्चुअली। मैं अपने एंगर को, अपने स्ट्रेस को आपको प्लेट में बहुत सुंदर तरह से सजा कर दे रही हूँ। मैं अपनी ग्रीड को, इफ आई एम डूइंग इट फॉर अ कमर्शियल प्रोसेस, इसीलिए एक्चुअली कहा जाता है प्रॉफिट के लिए जहाँ खाना बन रहा हो तो कभी खाना नहीं खाना चाहिए, नेवर, बिकॉज उसके पीछे की जो कॉन्शियसनेस है इट इज़ वेरी डिफरेंट। तो नेवर, इट शुड बी वेर इट्स बींग कुक्ड विद लव एंड यू नो आपको खिलाना चाहते हैं, ना कि आपसे कुछ कमाना चाहते हैं। कॉन्शियसनेस इज वेरी डिफरेंट।
0: एक बात मैं जानना चाहती हूँ, अगर हम थोड़ा साइंटिफिक जाए कि खाना जो है दैट इज मैटर,
3: नो फूड इज एनर्जी, ना लिविंग थिंग है ना, प्लांट इज अ लिविंग थिंग। मैटर पे भी तो माइंड का असर होता है।
2: इवन एनर्जी लेवल को मेजर भी किया गया है और उसमें देखा गया कि भी फ्रूट्स में सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल है, सेकंड इज स्प्राउट्स, थर्ड इज वेजिटेबल्स एंड फोर्थ इज रोटी चपाती दाल, उसमें काफी लो है।
3: कुक्ड जो
2: डेड हो गया,
3: कुक्ड में भी या इसमें वेजिटेबल्स में भी, आप फर्स्ट डे देखो जब वो फ्रेश है, फिर आप उनको देखो 2 दिन बाद, फिर आप उनको देखो 4 दिन बाद, उसमें भी एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाता है।
0: ओके, तो एनर्जी इन व्हाट सेंस, जो डिफरेंट विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब एनर्जी,
2: ये है, इट्स अ सूक्ष्म एनर्जी जो वास्तव में ऑरा के रूप में है, वो फ्रूट्स में, स्प्राउट्स में मैक्सिमम है।
0: तो ये जो एस्पेक्ट पर हमने एक्चुअली, वही हम बार बार बात कर रहे हैं कि लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, हमने खाना कैसे खाना चाहिए, कैसा खाना हो, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हो, कितना प्रोटीन्स हो, उस पर तो पूरा फोकस किया है। अगर हम इस पर फोकस कर पाते हैं, विच एक्चुअली लुक्स क्वाइट डिफिकल्ट।
3: नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट अवेयरनेस चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर मैं अपने माइंड पर अटेंशन रखना चाहती हूँ तो मुझे हर तरफ से अटेंशन रखना पड़ेगा ना। आई कांट डू दिस कि मैं अपना ध्यान रखूँ, मेरे को शांत रहना है, पीसफुल रहना है, फिर मैं जाकर गुस्से को कंज्यूम कर लूँ। एक कुछ डिश खाई और गुस्से की वाइब्रेशन कंज्यूम कर ली, तो मैंने जितनी मेहनत की थी उस पर फिर ये डैमेज हो जाएगा। फिर थोड़ा सा अटेंशन रखूं, वर्क करूं, फिर कोई और एनर्जी कंज्यूम कर लूं, फिर कहूं पता नहीं आज क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी अभी लंच में क्या खाया था, लंच में किसी का स्ट्रेस भी कंज्यूम किया था इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, पर मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही आज, लेकिन कंज्यूम क्या किया था, किसी और की लाइफ की प्रॉब्लम के चिंतन को मैंने अपने लंच के साथ कंज्यूम कर लिया था, इसीलिए नाउ दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई थिंकिंग ऑल्सो। आई वुडंट नो द एग्जैक्ट थॉट कि आपकी थॉट क्या चल रही है, वो मेरी थॉट हो जाएगी वो नहीं, लेकिन द क्वालिटी ऑफ द एनर्जी विल बी दैट। आजकल जैसे किरलियन फोटोग्राफी करके एक टेक्निक है जिसमें आप जब फोटो खींचते हैं तो आपको बॉडी की पूरी एनर्जी लेवल दिखाई देती है, तो उसमें सिर्फ शेप वही होती है, बाकी कलर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी। वही किरलियन फोटोग्राफी आप फूड और फ्रूट और कुक्ड फूड के सैम्पल्स की भी कर सकते हैं, और उसमें क्लियर नजर क्या आता है, आप नॉनवेज फूड है उसकी फोटोग्राफ लें, आप फ्रेश फ्रूट है उसकी फोटोग्राफ लें, आप उसी फ्रूट को 4 दिन बाद लें उसकी फोटोग्राफ लें, क्लियर के जो नॉनवेज फूड है उसकी जो एनर्जी फील्ड आएगी इट विल बी वेरी डार्क इन कलर, डार्क ब्लू ग्रे दैट साइड। फ्रेश फ्रूट है लाइटर, मतलब प्योरिटी है, वही फ्रूट स्टेल हो गया डार्कर साइड, तो इससे क्लियर दिखाई देता है दिस इज एनर्जी जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, थोड़े साल पहले जब इट वाज अ डीप कोर बिलीफ सिस्टम कि जैसा अन्न वैसा मन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के समय सब कहते थे ये कि जैसा अन्न वैसा मन. आज आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या किसी से बात करो, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट के बाहर से खरीद कर खाना खाया जाता है. दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट देयर. दिस इज ऑल इन द लास्ट 50-60 इयर्स, क्योंकि उस पर बहुत ध्यान रखा जाता था कि खाना कौन बना रहा है और किस स्थिति में बना रहा है. सो दैट एनर्जी फील, अब वो साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है. जो हमारी संस्कृति में पहले बताया जा रहा था, टुडे वी आर साइंटिफिकली गेटिंग द प्रूफ ऑफ दैट.
2: इनफैक्ट पानी के लिए भी जैसे बताते हैं ना, भी पहले के जमाने मेरे दादा ये कहानी सुनाते थे कि भी एक व्यक्ति जा रहा था तो उसने कहीं से पानी पिया, तो नॉर्मल विचार है, आगे गए दूसरे कुएं से पिया तो चोरी करने के विचार आए. उसको लगा ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, ऐसे विचार क्यों आ रहे. तो किसको पूछा कि भी कुआ किसने बनाया, तो उसने सचमुच कहा कि भी एक चोर था, उसमें फिर चेंजेस भले आए लेकिन उसने ये कुआ बनाया है. तो कहते हैं उससे, हाँ मैंने इससे पानी पिया तो शायद मेरे मन में इस प्रकार के विचार आने लगे. और आज तो देखो ना, वो रिसर्च भी जो जापान के साइंटिस्ट की रिसर्च, कईयों को इसके बारे में पता है कि वाटर के क्रिस्टल्स बना दिए गए और बस उस पर फर्क इतना ही था कि सिर्फ नाम अलग लिखा था कि भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ. एक बॉटल पर लिखा कि मैं तुम्हारे से नफरत करता हूँ, एक बॉटल पर मदर टेरेसा लिखा, एक पर हिटलर लिखा. और फिर उसके क्रिस्टल बना करके जैसे MRI करते, जैसे स्पेशल उसको माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी MRI की गई, तो देखा कि भाई जिस पर लिखा था आई हेट यू, वहाँ वाइब्रेशंस दूर दूर जा रहे हैं, वो नजीक क्रिस्टल्स नजदीक में
3: क्रिस्टल बना ही नहीं ना, क्रिस्टल बनता ही नहीं है. एंड जो पीसफुल वाइब्रेशंस के एकदम क्लियर डिफाइंड शार्प क्रिस्टल्स बने हैं.
2: योने भी बहुत अच्छा उसका एक इंटरप्रेट, भी हिटलर लिखा था उसमें वह अणु नजदीक आ नहीं, कोशिश कर रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे. तो उन्होंने यह कहा कि भल हिटलर बहुत खराब व्यक्ति था लेकिन कहते कोर जो उनका है ना अच्छा है. जो ब्रह्मा कुमारी में मानते हैं कि भी आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी वो अच्छी है, भले एक्वायर्ड कुछ भी हो, तो भी ओरिजिनली वो अच्छा व्यक्ति था पर उसने बहुत बुरे काम किए. तो इस प्रकार से वाइब्रेशंस की क्रिस्टल्स पर कितने इफेक्ट होते हैं.
0: तो मतलब सिर्फ ये कहने से, सिर्फ ये लिख देने से ही, या जो भी आपने वाइब्रेशंस दिए, पानी अगर ऐसा क्रिएट कर रहा है, तो हम जो खा रहे हैं, इनफैक्ट भैया बात नॉन वेजिटेरियन फूड की हुई, ये भी आजकल एक बहुत ज़्यादा इस पर बात करते हैं लोग. सी इट्स अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन. बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, वेजिटेरियन बने, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन का सबको पता चलता जा रहा है कि कितना भी अपने आप को हम समझाते हैं कि प्रोटीन लेवल चाहिए, बच्चों को देना चाहिए क्योंकि उससे जो प्रोटीन्स की मात्रा है वो ठीक मिलती है ग्रोइंग एज में, लेकिन कर नहीं पाते हैं. तो वॉट इज़ द डिफरेंस, यू नो, वाई वेजिटेरियन फूड इज़ बेटर देन नॉन वेजिटेरियन फूड?
2: कई दृष्टि से अगर आप देखो, जैसे भी आपने बताया ना प्रोटीन की बात भी, इनफैक्ट दालों में जो प्रोटीन है वो एक से बहुत अच्छा है. सोयाबीन प्रोटीन इज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन. वास्तव में मिथ है कि भी नॉन वेज में ज़्यादा प्रोटीन है. तो एक तो ये बात बल प्रोटीन की, साथ साथ में अगर हम हार्मफुल इफेक्ट्स को देखें कि आज जो सबसे जो नंबर वन किलर इज वॉट, क्या है नंबर वन, हार्ट डिजीज. और हार्ट डिजीज क्यों हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के कारण. तो आज नॉन वेज में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है और भी सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल है कि जो सीधा जाके हार्ट की धमनियों में चिपकता है. तो इसके कारण ये एक सिंगल रीजन से भी हमें वेजिटेरियन बनना चाहिए. और एक सूक्ष्म बात की जो आमतौर पर लोग नहीं समझते हैं कि जब प्राणी को मारा जाता है ना, आपके पीछे कोई गन लेके भागे तो क्या होगा, एक्सट्रीम फियर निर्माण होगा और उससे फिर वो टॉक्सिक केमिकल्स निर्माण होते.
0: अच्छा,
2: एड्रेनालिन,
0: क्योंकि वो सारा वो होगा ना, अब वो कौन सा सिंपैथेटिक,
2: हाँ सिंपैथेटिक
0: नर्वस सिस्टम जो है जी, तो वो जानवरों में भी वैसे ही होता है.
3: एंड लास्ट ना उस टाइम आपने मार दिया सिर्फ गन लेके भी नहीं, हम तो खींच के वो स्लॉटर हाउस में लेकर जा रहे हैं
2: उनको पता भी मारने वाले केमिकल्स चल रहे,
3: टॉक्सिक थॉट्स. और जो गिरीश भाई ने बताया वो सारे केमिकल्स बॉडी में सिक्रेट होते हैं,
2: कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन हाई लेवल में रिलीज होता है. और वह जब आप मांस को पकाते हो तब भी वह खत्म नहीं होता.
0: अच्छा, तो वो रिटेन रह जाते हैं.
2: इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि ये जो केमिकल्स है वह डिस्ट्रॉय नहीं होते. तो आप उसको खा रहे हो, नहीं सोचो एक्सट्रीम
0: ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं. तो कहीं ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि ये खाते हैं तो उनका प्रोडक्शन और इंक्रीज हो जाता है?
2: प्रोडक्शन उसकी इफेक्ट होगी, क्योंकि ऐसे तो खाते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, लेकिन उसकी ओवरऑल इफेक्ट आपके बॉडी पर भी होगी.
0: लेवल ऑफ दिस दीस हार्मोन्स बिकम्स मोर
2: इंक्रीज एंड नो देन दैट हार्मफुल इफेक्ट विल इंक्रीज
3: एंड एनर्जी भी कौन सी कंज्यूम की, फियर और एंग्जायटी की. तो अब आप डिसाइड करो, आप बोल रहे हो ना छोड़ने में मुश्किल लगता, तो प्रोटीन्स है, यू जस्ट हैव टू टेल योरसेल्फ दिस इज प्रोटीन्स प्लस फियर एंड एंग्जायटी.
0: And then so many harmful.
3: Now do I want to eat? This is that non-veg dish. It is proteins plus fear and anxiety. And yahan hamara dal, paneer, sprouts. This is proteins minus fear and anxiety. Now choose. It's open. You know, everyone has the right to choose. Lekin ek bar aapne choice ki hai ki main fear or anxiety ko aur ye sab hormones ko consume karne wala hu. Fir nahi apne aap ko kahe ki main kyun pareshan rehta hu. Mujhe kyun choti choti baaton mein gussa aa raha hai. Maine consume kiya hai usko aur main consume kar raha hu every day. To kyun nahi aayega? Bachna chahta hu, koi baat nahi, fir chhodo. ट्राई तो करे, एक्सपेरिमेंट तो करके देखे ना. हर रोज वही कंज्यूम कर रहे हैं, फिजिकली भी डैमेज, यू नो, फियर कंज्यूम करना, हम किसी के फियर को कंज्यूम कर रहे हैं. व्हाट मस्ट बी द लेवल ऑफ फियर व्हेन समवन इज गोइंग टू बी स्लॉटर्ड. यू जस्ट हैव टू थिंक कि मेरे अंदर किस तरह की थॉट्स चलेंगे इफ आई वॉज गोइंग टू बी स्लॉटर्ड जस्ट नाउ. दैट इज व्हाट आई एम कंज्यूमिंग.
0: तो वो जो एक्चुअली अगर हम देखें भी कि कोई डरा हुआ या गुस्से में होता है व्यक्ति या घबराहट में होता है, हम उसके साथ होते हैं, हम उसकी घबराहट का हिस्सा बनते
2: हैं.
3: आपको फील नहीं होता
0: यू नो एकदम से डर भाई, अगर आप फियर के माहौल में हैं, आपको खुद फियर हो, यू स्टार्ट गेटिंग अफ्रेड, यू नो.
2: एग्जाम में होता है ना, एग्जाम सब नहीं, एक बच्चा डरा हुआ है, सारे डर जाते हैं, एक का फियर. और देखो दो इम्पोर्टेंट रीजन है, एक तो कि आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, क्या उसमें डीजल डालेंगे? नहीं डालेंगे, कोई कहे भी सस्ता मिल जाए, खराब भी हो जाएगी. तो ऐसे ये समझने की जरूरत है कि जो हमारी गाड़ी है वो किसके लिए बनी है, नॉन वेज के लिए बनी है या वेजिटेरियन डाइट के लिए बनी है. और अगर आप एनिमल किंगडम में देखो, ह्यूमन बीइंग तो सबसे वो एडॉप्ट हो गए, एनिमल किंगडम में वेजिटेरियन एनिमल भी है, नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है. अगर आप देखेंगे कि जो वेजिटेरियन एनिमल है उनकी पूरी सिस्टम
0: हर्बीवोरस
2: और हमारी सिस्टम, हाँ हर्बीवोरस एनिमल, वो एग्जैक्टली सेम है.
0: अच्छा,
2: देखिए वेजिटेरियन एनिमल्स जो है उनके कनाइंस जो है वो बहुत बड़े नहीं है, चीर फाड़ करने के बड़े दांत नहीं है, हमारे भी कनाइंस बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं. ऐसे जो मुंह में सलाइवा होता है वो नॉन वेजिटेरियन एनिमल का हाईली एसिडिक है, हमारा सलाइवा है वो अल्कलाइन है. हमारे स्टमक में भी जो एसिड है वो बहुत कम है, नॉन वेजिटेरियन एनिमल के स्टमक में बहुत मात्रा में एसिड होता है. ऐसे एक मेन डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वो कितने बड़े हैं पता है ना, अवर स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर 22 feet लॉन्ग, वो कॉइल के रूप में पेट में पड़े हैं. जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स हैं उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सिर्फ 6 feet लंबे, क्योंकि पहले से कुदरत को पता था कि नॉन वेजिटेरियन एनिमल इसमें फाइबर नहीं होना है तो वह धीरे धीरे पास होगा, तो इसके लिए वो 6 feet के ही बनाए. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बनाए 22 feet के, क्योंकि पता था कि बहुत सारा फाइबर कंज्यूम करेगा, वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करेगा तो वह फिर स्लोली जाएगा और उसको 24 घंटे लगेंगे बाहर आने में. और भी कुछ अगर हम चीजें देखें कि बाइल का प्रोडक्शन, लीवर जो बाइल सिक्रिट करता है, हमारे में बाइल की मात्रा कम है क्योंकि हम फैट कम कंज्यूम करने वाले, नॉन वेजिटेरियन फूड में बहुत ज्यादा फैट है, तो इसलिए जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल है उनका बाइल का भी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए इतनी मात्रा में बाइल को चाहिए. तो ये सारी सिस्टम को ही देखो, हमारी सिस्टम वेजिटेरियन एनिमल्स की तरह है. और दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है ना वो जीभ से पानी पीते हैं.
0: अच्छा,
2: हम जीभ से, हम तो मुंह से पीते हैं, वेजिटेरियन एनिमल ही मुंह से पानी पीते हैं. और भी एक डिफरेंस है कि जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है उनको जो टेम्परेचर को कंट्रोल करना है ना, अब एक कुत्ते को देखना से करेगा जब उसको टेम्परेचर को डाउन लाना है, लेकिन हमारे में वो सिस्टम ही है कि ऑटोमेटिक हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर है वो नॉर्मल होने लगता है. दैट इज देयर ओनली इन वेजिटेरियन एनिमल्स. तो आवर होल सिस्टम इज सच, उसको भी कोई समझ ले तो चेंज हो जाए.
0: इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. और जिस तरह की आज हमने वही बार बार हम कह रहे हैं कि अवेयरनेस की पता चला है, क्योंकि अभी तक शायद सब बोलते थे कि वेजिटेरियन होना चाहिए या खाना जो है वो सही और जैसा कि अन्न का मन पर असर है, सुनते आए थे समझ नहीं पा रहे थे और ये सोचते थे कि ये हमारे हाथ में है ही नहीं, सी हम खाना बना नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे इंक्लिनेशन नहीं है, और हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये हमारे को इतना फर्क डाल रहा है। अच्छा खाना खाने को, जो हेल्दी सपोजिटली खाना है, उसके ऊपर हमने फोकस शुरू किया अगेन, बिकॉज हमें लगा कि वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन आज जब हम थॉट बार बार हम कह रहे हैं सोच समझ के सोचना है, अगर उस पर ये सारी चीजें इतना असर डाल रही हैं, थैंक यू सो मच। सल्यूशन हमारे सामने है, आज अवेयरनेस है, आज ज्ञान है, आज समझ में आ रहा है कि अभी तक हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे कि हम खा क्या रहे हैं। हमने बहुत बार सोचा कि राइट डाइट, उतना विटामिन खाने हैं, उतना कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, बच्चों के लिए भी हम फिक्स कर रहे थे, हस्बैंड के लिए, अपने लिए, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हम सोच क्या रहे हैं। अगर इस पर फोकस करना है तो खाना बनाते वक्त और खाते वक्त हम क्या सोच रहे हैं, उसका हमारे विचारों पर, हमारे शरीर पर भी बहुत असर पड़ रहा है। और ख़ासकर अगर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच की कश्मकश थी, आज समझने की ज़रूरत है कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और जैसा कि शुरू में कहा था कि हम क्या खा रहे हैं उससे हम बनते हैं, या हमें क्या खा रहा है हमें ये भी सोचना है। तो बॉल हमारे कोर्ट में है, हमने देखना है कि कैसे आगे खेलेंगे। कोई बात मन में है, कोई विचार है, आप हमारे साथ शेयर करें, हमें ईमेल करें या फिर फोन पर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। ओम शांति।

0: शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी
1: एपिसोड नंबर 3 हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक।
0: जल जीवन मिशन हर घर जल,
1: समझो भी अपनाओ भी। जल जीवन मिशन और उसके सभी घटकों को समुदाय को सरल भाषा में समझाने पर केंद्रित।

0: मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा संचालित, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: भवन। खंड एक।
1: अरे पता नहीं स्वच्छिका कहाँ रह गई, इतना लेट तो वो कभी नहीं होती थी। लगता है आज मुझे अकेले ही कार्यक्रम चलाना पड़ेगा।
0: अरे अरे अरे रुको रुको रुको सुजल, आ गई मैं।
1: अरे आ गई तुम, मुझे लगा कि कहीं पानी भरने तो नहीं चली गई।
0: पानी भरने? नहीं नहीं सुजल, कुएं हैंडपंप पर जाना अब हुआ बीता हुआ कल, अब तो है हमारे घरों में नल से जल।
1: हाँ सही कह रही हो तुम, पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है।
0: मुझे आज भी याद है कि कैसे मेरे गांव में महिलाएं, बच्चियां और लोग सुबह से पानी के इंतजाम में लगे रहते थे ताकि बाकी काम समय पर पूरे हो सके।
1: सही कर रही हो, कितनी बार तो उन्हें दिन में दो दो चक्कर लगाने पड़ते थे ताकि पानी कम न पड़ जाए।
0: और बच्चियों की पढ़ाई भी छूट जाती थी। यही नहीं, गंदे पानी के सेवन से बीमार होना तो आम बात हो गई थी।
1: पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा?
0: सोचू मैं सोचू तेरा ढंग कैसा।
1: वाह स्वच्छिका, ये तो नया गाना बन गया।
0: सुजल महाशय, गाने का समय खत्म, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए।
1: ओ हाँ, आप सभी को सुजल का
0: और स्वच्छिका का नमस्कार।
1: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम प्रस्तुत है
0: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, परिवर्तन की ओर। सुजल, जल जीवन मिशन ने समय बदल दिया है। जल जीवन मिशन, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, इसके तहत हर घर जल कार्यक्रम ने देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में नल से जल पहुँचाना शुरू कर दिया है।
1: हाँ, अब महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चियों को पानी ढोने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
0: लेकिन ये सब आसान नहीं था। कई लोग सोचते हैं कि जल जीवन मिशन बस पाइप बिछाने का काम है, जबकि सच्चाई ये है कि यह हर परिवार के लिए रोज साफ, सुरक्षित और पर्याप्त पानी पहुंचाने का संकल्प है।
1: जो पानी आज नल में दिखा रहा है वह अपने आप नहीं आया, इसके पीछे पूरे देश की मेहनत और लोगों की भागीदारी है। अब जल जीवन मिशन 2.0 के तहत इसे 2028 तक बढ़ाया गया है ताकि हर घर तक पानी पहुंचे और हर गांव में जल योजनाओं का बेहतर संचालन, रखरखाव और सतत सेवा सुनिश्चित की जा सके। राहें खुद ब खुद बनेगी, तुम बस कदम बढ़ाते चलो, होगा हर काम आसान, तुम मन में अलख जगाते चलो।
0: सही कहा, होगा आसान हर वो काम जो अब तक तुमको भारी था, होगा आसान हर वो काम जो अब तक तुमको भारी था। जीत उसी की होती है जिसकी पूरी तैयारी थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश ने हर मुश्किल में काम किया। कहीं रेगिस्तान की गर्मी में, कहीं पहाड़ों में, आज हर घर और हर बस्ती तक नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है।
1: अरे क्या हुआ?
0: ये सब सुनकर किसी के भी आंखों में आंसू आ जाए। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, देश की लाखों महिलाओं और बच्चियों के सर से आज पानी ढोने का बोझ उतर गया है। अच्छा, नल से जल मिलने के बाद हमारे गांव में और क्या क्या बदलाव आया?
1: पहले पानी पी लो फिर बताता हूँ।
0: जी जरूर।
1: देखो स्वच्छिका, सिर्फ पानी ही नहीं आया, गांव के लोग भी इस योजना से जुड़े हैं। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से लोग मिलकर इसे संभाल रहे हैं और हमारी माताएं बहनें इसमें आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभा रही है।
0: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, ये क्या होता है, जरा अच्छा से समझाओ ना।
1: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति यानी पानी समिति के लोग, जिनका गठन हर गांव में होता है और इस समिति में आधी महिलाओं का होना जरूरी होता है।
0: पर इनका कार्य क्या होता है?
1: चलो आज यह भी बता देता हूँ। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति यानी पानी समिति का काम है ये सुनिश्चित करना कि गांव में पानी की सप्लाई ठीक से चल रही है।
2: नल जल मित्र ऑपरेटर की मदद से मोटर, पाइपलाइन और टंकी का रखरखाव कराया जाए, लीकेज ठीक किए जाए, पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच हो, और हाँ, पानी के इस्तेमाल के लिए जो शुल्क है उसके लिए लोगों को जागरूक करना।
0: बाप रे, ये सब वो गांव वाले खुद करेंगे?
2: अरे नहीं, ये सब करने के लिए पंचायत उनकी मदद करती है। साथ में वे कुछ कार्यों को करने के लिए स्व सहायता समूह की दीदी की भी मदद लेते हैं।
0: अच्छा, और पंचायत स्तर पर सरपंच, प्रधान, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि के क्या काम होते हैं?
2: पंचायत स्तर पर सरपंच, प्रधान, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि पानी समिति के साथ मिलकर योजना का रखरखाव करते हैं, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे।
0: अरे वाह, अब समुदाय की भूमिका भी बता दो सुजल कुमार।
2: स्वच्छिका, समुदाय सबसे अहम कड़ी है। उनके साथ के बिना किसी भी योजना का रखरखाव और उसकी सततता कायम रहना बहुत मुश्किल है। इस योजना के लिए समुदाय और हर व्यक्ति का कर्तव्य है पानी समिति एवं पंचायत के साथ मिलकर कार्य करना, समय पर जल सेवा शुल्क देना, पानी बर्बाद न करना, पानी के स्रोत की रक्षा करना एवं इसे बनाए रखने के लिए जल के पुनः भरण यानी रिचार्ज पर कार्य करना, शिकायत छिपाई नहीं तुरंत बताना और सरकार के साथ मिलकर समाधान भी ढूंढना।
0: जब हर व्यक्ति कहे ये योजना मेरी है, तभी योजना टिकाऊ होती है।
2: और इसलिए अब योजनाओं की जानकारी जैसे पानी की आपूर्ति, गुणवत्ता और रखरखाव को सार्वजनिक करने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति जानकारी के आधार पर अपनी भूमिका निभा सके।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, पर योजना में कुछ खराबी भी आती होगी, उसे कैसे ठीक करते हैं?
2: ऐसी स्थिति में ग्रामीण अपने गांव के सरपंच या पानी समिति के सदस्य को बता सकते हैं। इसे चलाने के लिए एक ऑपरेटर भी होता है, जिसे हम नल जल मित्र कहते हैं। वो भी छोटी मोटी समस्या का समाधान कर देता है। बड़ी समस्या के लिए जिले स्तर पर स्थित DTU से संपर्क कर उनसे मदद ली जा सकती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
2: इस मिशन ने अब तक क्या क्या प्रगति की है और जल जीवन मिशन 2.0 में क्या खास है, हमें बताएंगे श्री कमल किशोर सोन, जो जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक है। चलिए उनको सुनते हैं।
3: नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी के माध्यम से आप सभी से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चूंकि आज का यह एपिसोड जल जीवन मिशन पर केंद्रित है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। साथियों, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक और गांव के आंगनवाड़ी व स्कूल जैसे संस्थानों तक पाइपलाइन के माध्यम से नल से साफ और सुरक्षित पीने का पानी पहुंचे। पिछले कुछ वर्षों में हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े हैं। आज मिशन उस चरण में पहुंच चुका है जहां कई गांवों और पंचायतों में योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अब उनका संचालन और रखरखाव सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसी क्रम में मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन का दूसरा चरण लागू हो चुका है, जिसके अंतर्गत मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। इस नए चरण में जल जीवन मिशन अब नए सुधारों के साथ संचालित हो रहा है। अब हमारा ध्यान सिर्फ हर घर तक नल से जल पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि यह सेवा नियमित, सुरक्षित और लंबे समय तक सतत रूप से बनी रहे। इसके लिए गांव के लोगों की भूमिका को और मजबूत किया जा रहा है। जल सेवा आकलन के माध्यम से गांव के लोग खुद अपनी योजना की समीक्षा करते हैं एवं पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता और सेवा की स्थिति को समझते हैं। इसके बाद जिला स्तर की तकनीकी टीम यानी DTU डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल यूनिट की मदद से सेवा में सुधार की योजना तैयार करती है। DTU पंचायतों को रखरखाव एवं मरम्मत के कार्यों में भी मदद करता है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत जन भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु संवाद कार्यक्रम के माध्यम से दो स्तरों पर सीख और अनुभव साझा किए जा रहे हैं। सुजल ग्राम पेयजल संवाद में ग्राम और ग्राम पंचायत अपनी अच्छी पहल और उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर तक साझा करते हैं, जिससे उन्हें पहचान मिलती है, उनके कार्यों को सराहा जाता है और देश के दूसरे गांव भी उनसे सीखते हैं। वहीं DC और DM पेयजल संवाद एक ऐसा मंच है जहां जिला प्रशासन अपने जिले के सफल उदाहरण और अनुभव साझा करता है, जिससे पेयजल से जुड़े प्रभावी समाधान और श्रेष्ठ कार्य पूरे जिले के साथ साथ अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचते हैं। वहीं DC DM पेयजल संवाद में जिला प्रशासन अपने जिले के सफल उदाहरण और अनुभव साझा करते हैं, जिससे पेयजल संबंधित जरूरी समाधान और बेहतर कार्यों को पूरे जिले और अन्य स्थानों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, जल जीवन मिशन केवल पाइप और टंकी लगाने की योजना नहीं है, बल्कि यह जन भागीदारी पर आधारित एक जन आंदोलन है। जब गांव खुद अपनी जल व्यवस्था को समझकर संभालता है, तभी यह लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। इसलिए जल स्रोतों की सुरक्षा, गुणवत्ता बनाए रखना और समुदाय की भागीदारी इस मिशन के प्रमुख आधार हैं, ताकि पानी आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित बना रहे।
0: खंड 2।
2: स्वच्छिका, जैसा मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन ने बताया, जल जीवन मिशन 2.0 में कई सुधारणाएं लाए गए हैं, जिनसे पानी की सेवा को नियमित, टिकाऊ और बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सोचो, अभी तो देश के 15 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल आ रहा है। जब देश के सारे घरों में नल से जल आने लगेगा, वो भी नियमित सतत, तो लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना?
0: हाँ ना, लेकिन जो जल नल से आएगा उसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सब गांव वालों की ही तो है, उन्हीं को निभानी भी होगी ताकि कोई बीमार ना पड़े। कौन हंसा? सुजल, तुमने सुना?
2: ये वही है दूषिका, तुम्हारी बातें सुनकर हंस रही है।
0: मैंने कोई मजाक की बात कही है क्या?
2: अभी अभी तुमने क्या कहा?
0: क्या कहा?
2: यही कि जल को स्वच्छ करने की जिम्मेदारी लोगों की भी होगी।
0: तुम बार बार हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे भोलेपन पर हंस रही हूँ। अगर तुम लोगों को साफ पानी की परख होती, उसका महत्व पता होता, तो मैं कब की यहाँ से दूर जा चुकी होती। तुम लोग सोचते हो कि बस पानी आएगा तो सब ठीक, अगर पानी गंदा हो जाए तो बीमारी, अस्पताल, सब मेरी वजह से होगा। मैं दूषिका, पानी प्रदूषण की रानी।
2: ओ पानी प्रदूषण की रानी, अब तुम्हारा दौर खत्म।
0: इस बार हम तेरी एक नहीं चलने देंगे।
2: हमने ठान लिया है, लोगों को साफ पानी का महत्व भी बताएंगे।
0: ओह, तो क्या अब तक लोगों के घर पानी नहीं आता था? ऐसा क्या बदलाव आ गया है?
2: बिल्कुल आता है, लेकिन जल जीवन मिशन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर पेयजल स्कीम में स्रोत से आने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए डिसइंफेक्शन यूनिट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था हो। क्लोरिनेशन, फिल्टरिंग और अन्य ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं के माध्यम से साफ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति हो सके।
0: पर पानी तो बाद में भी गंदा हो सकता है, इसे लोगों को पता कैसे चलेगा?
2: तुम्हें पता नहीं है, जल जीवन मिशन में पानी की गुणवत्ता की जांच बहुत जरूरी हिस्सा है। तुम्हें पता है इसके लिए हर गांव में 5 महिलाओं एवं दीदियों को फील्ड टेस्टिंग किट FTK से पानी की गुणवत्ता की जांच करना सिखाया जाता है। जरूरत पड़ने पर सैंपल या नमूना को लैब में भी भेज कर सत्यापित किया जाता है। जल जीवन मिशन के नए चरण में ऐसे महिला दीदी समूहों को अब सुजलाम शक्ति का नाम दिया गया है।
0: स्वच्छिका मैडम और सुजल भाई साहब, लोग तुमसे ज्यादा मेरी बात मानते हैं। तुम लोग तो उन्हें कठिन कठिन टास्क देते हो, ये धो वो साफ करो, ऐसा रखो वैसा रखो। मैं उन्हें कहती हूँ छोड़ो, हटाओ, फेंको, रहने दो, कोई चिंता मत करो। लेकिन अब सब हमारी बात सुनेंगे। हम लोगों को बता रहे हैं कि अपनी छोटी छोटी आदतों से हम पानी के स्रोत को साफ रख सकते हैं।
2: क्योंकि शुद्ध पेयजल हमें बीमारियों से बचाता है, बच्चों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है और घर का खर्च भी कम करता है। जब परिवार स्वस्थ रहता है तो दवा और इलाज पर होने वाले खर्चे बचता है, जिससे पैसे बच्चों की पढ़ाई, पोषण और घर की जरूरतों पर खर्च किया जाता है। इसीलिए प्रदूषिका महोदया, अब तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो।
0: ओ, ओ, ओ, ये जल जीवन मिशन तो सबको जागरूक बना रहा है। कोई बात नहीं, अभी जा रही हूँ लेकिन फिर आऊंगी। जिस गांव के लोग कमजोर पड़ेंगे वहाँ फिर पहुँच जाऊंगी मैं, देखना वो मुझे जरूर मौका देंगे।
2: जाओ जाओ, तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है, भागो।
4: चलो चलो सुने हम रेडियो की सुबानी, सच सुजल गांव की एक अनोखी कहानी।
5: हम पानी बना नहीं सकते, सिर्फ बचा सकते हैं। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, पानी चाहिए तो उसे बचाइए। लीकेज रोकें, पानी बचाएं। क्या आप जानते हैं मामूली लीकेज से ही हर महीने 1,000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। यदि एक नल से हर मिनट 45 बूंद पानी टपकता है तो 3 घंटे में 1 लीटर से ज्यादा पानी बह जाता है। पानी की हर बूंद मायने रखती है। जल बचाएं, भविष्य बनाएं।
6: स्वच्छ सुजल यही है भारत का नारा न्यारा।
7: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
0: खंड 3, समुदाय की भूमिका। सुजल, क्या सचमुच लोग हमसे ज्यादा दूषिका की बात मानते हैं?
2: स्वच्छिका थोड़ी सी लापरवाही और आलस के कारण हम अपने पानी के स्रोतों को गंदा कर लेते हैं और दूषिका की जीत हो जाती है।
0: अच्छा, तुमने बताया था कि जल जीवन मिशन में निर्माण के समय मुख्यतः सरकार और विभाग काम करते हैं, समुदाय के साथ मिलकर। लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद ये योजना चलाने की जिम्मेदारी गांव के लोग कैसे संभालेंगे? योजना समुदाय व पंचायत को कैसे और कब दी जाएगी?
2: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निर्माण पूरा होने के बाद कुछ दिन स्कीम को जांच के लिए ट्रायल रन किया जाता है ताकि इसमें कोई कमी न रह जाए। इसे कमीशनिंग कहते हैं। सब कुछ सही पाने के बाद गांव स्तर की योजनाओं को पंचायत एवं समुदाय को सौंप दी जाती है और यह करने के लिए सरकार समुदाय के साथ मिलकर इस अवसर को जल अर्पण दिवस के रूप में मनाती है। यह ट्रायल रन कम से कम 15 दिन का होना जरूरी है।
0: जल अर्पण दिवस, बड़ा ही प्यारा नाम है, इसका मतलब क्या है?
2: ये जानकारी हमें जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन दे रहे हैं।
3: मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। चलिए आज के इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि जल अर्पण दिवस क्या है। 73वें संविधान संशोधन और जन भागीदारी की भावना के अनुरूप जल जीवन मिशन में जब कोई जल आपूर्ति योजना पूरी होती है तो उसे संचालन और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत और समुदाय को सौंपा जाता है। इसी जिम्मेदारी को उत्सव के रूप में स्वीकार करने के लिए जल अर्पण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जल अर्पण दिवस उस गांव के लिए एक ऐतिहासिक दिन होता है जब सरकार और विभाग जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनी ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजनाओं को औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय को सौंपते हैं। इस दिन गांव का समुदाय अपनी जल व्यवस्था को गर्व, जिम्मेदारी और अपनापन के साथ स्वीकार करता है और उसे संभालने व सुरक्षित रखने का सामूहिक संकल्प लेता है।
2: जल अर्पण दिवस, क्या अब समझ में आ गया? ये जानकारी जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन ने दी थी।
0: हाँ बिल्कुल, इस दिन का संदेश ये है कि अब पानी सिर्फ सरकार की योजना नहीं, ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है। सब मिलकर इसकी देखभाल करेंगे आज, कल और आने वाले वर्षों तक। लेकिन ये बताओ, ये कैसे जांचेंगे कि योजना अब हैंडओवर के लिए तैयार है? क्या क्या करना होगा?
2: योजना को गांव को सौंपने से पहले यह देखा जाता है कि पानी समिति बनी है या नहीं, क्या योजना को कुछ दिन चलाकर जांचा गया है, पानी सही है या नहीं, इसकी जांच हो चुकी है, नल जल मित्र और समिति को काम की जानकारी दी गई है, पूरे सिस्टम की जमीनी जांच हो गई है और सब जानकारी गांव में खुले में लगाई गई है, जल चौपाल करके गांव वालों को जोड़ा गया है और जल स्रोतों की सफाई भी हो चुकी है। जब यह सब पूरा होता है तभी योजना गांव को सौंपी जाती है।
0: अरे वाह, ये तो बताओ कि इसे कैसे मनाएंगे?
2: इसे एक सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसे हम अपनी स्थानिक लोक परंपरा के हिसाब से मना सकते हैं। सोर्स टू टेप समुदाय के साथ मिलकर ट्रांसेक्ट वॉक यानी जल परिक्रमा की जाए, गांव के स्कीम का नक्शा और जल गुणवत्ता रिपोर्ट सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित की जाए और जल योजना संरचनाओं पर हम पवित्र धागा बांधकर, जल बंधन धागा बांधकर सुरक्षा का संकल्प, हम अपनी योजना एवं जल स्रोत की रक्षा करेंगे, साथ में जल संरक्षण की आदतों को अपनाएंगे एवं उपाय भी करेंगे। इसी दिन योजना से जुड़ी सारे दस्तावेज पंचायत को हैंडओवर भी किए जाएंगे। ये ध्यान रहे इसे अपनी स्थानिक संस्कृति के अनुसार मनाया जाए। इस दिवस हर गांव को अपने माननीय सांसद एवं स्थानिक मंत्री प्रवासी ग्रामीणों को जरूर बुलाना चाहिए, अन्य जन प्रतिनिधियों एवं इसके अलावा सभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम जल उत्सव भी मना रहे हैं।
0: जल उत्सव? ये जल उत्सव आखिर है क्या?
2: बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जल उत्सव 3 स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है ताकि हर व्यक्ति इससे जुड़ सके।
0: 3 स्तर? जरा आसान भाषा में समझाओ ना।
2: हाँ बिल्कुल। सबसे पहला है राष्ट्रीय स्तर का जल महोत्सव। यह हर साल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से 22 मार्च विश्व जल दिवस तक मनाया जाता है।
0: अच्छा, यानी पूरे देश में एक साथ पानी को लेकर जागरूकता और भागीदारी का माहौल बने।
2: बिल्कुल सही। इसमें देश भर में कार्यक्रम, संवाद, सम्मान समारोह और जन भागीदारी के आयोजन होते हैं ताकि पानी को लेकर सामूहिक जन जागरूकता का माहौल बने।
0: और दूसरा स्तर कौन सा है?
2: दूसरा है राज्य स्तर का राज्य जल उत्सव या नदी उत्सव। इसमें हर राज्य अपनी नदियाँ, जल परंपराओं और स्थानिक संस्कृति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करता है।
0: मतलब हर राज्य अपने हिसाब से अपनी पहचान के साथ जल उत्सव मनाता है।
2: हाँ, जैसे कहीं नदी है किनारे कार्यक्रम, कहीं जल संरक्षण अभियान, तो कहीं स्थानिक त्योहारों के साथ इसे जोड़ा जाता है।
0: और तीसरा स्तर?
2: तीसरा और सबसे अहम है गांव एवं पंचायत स्तर का लोक जल उत्सव।
0: ये तो सबसे जरूरी है क्योंकि असली काम तो गांव में ही होता है।
2: सही कहा। ऐसे जल उत्सव में जल चौपाल भी होती है। गांव के लोग मिलकर अपनी जल योजना की समीक्षा करते हैं और यदि कोई कमी हो तो उसे ठीक कर अपनी सेवा को और बेहतर बनाते हैं। पानी के स्रोतों की सफाई की जाती है और सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि योजना को टिकाऊ बनाएंगे।
0: मतलब देश से लेकर गांव तक हर स्तर पर पानी को एक उत्सव, एक जिम्मेदारी और एक जनभागीदारी के रूप में जोड़ा गया है।
2: बिल्कुल, जल उत्सव का मतलब सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि यह है जनभागीदारी से जल की जिम्मेदारी।
0: बिल्कुल, और हमने इसके लिए जल अर्पण दिवस के दौरान सम्मिलित गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी और राजगढ़ के सांसद श्री रोडमल नगर जी से बात की। आइए जाने क्या कहते हैं वे इनके बारे में।
8: धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी, धन्यवाद जल शक्ति मंत्रालय सीआर पाटिल साहब, धन्यवाद पूज्य योगी महाराज। एक ऐसी सोच जो मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ बिकॉज मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ। पानी जो आने वाले समय पे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि कम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा धरती पर, अब उसको बचाना, उसको संजो करके रखना और वहां पर पानी की व्यवस्था, हर घर में नल से जल देने की व्यवस्था, ये बहुत बड़ी सोच थी। ये इम्पॉसिबल जैसा था, इम्पॉसिबल जैसा, लेकिन मैंने इसको पॉसिबल होते हुए अपने 6 संसदीय क्षेत्र में देखा। 2.25 लाख लीटर की टंकी लगाई, ऑटो मशीन पर पानी हर घर में आ रहा है, कितनी खुशी थी। ये खुशी का कोई मापदंड नहीं।
9: जल जीवन मिशन का जो काम है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, हर घर नल से जल, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सराहना करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और राजगढ़ जिले में भी 1331 के लगभग गांव ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन्होंने लिए हैं। ये ठीक है कुछ व्यवधान रहे, उसकी वजह से कुछ लेट लतीफ हुई है, लेकिन बहुत ही प्रशंसनीय है। कुंडी में गांव में तो 24x7 24 घंटे नल से जल प्रदाय हो रहा है और वहां की जो पद्धति को हमने देखा और वहां से जो हमने सीख ली वो भी बड़ी अनुकरणीय है। सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि नल की टोटी निकाल देते हैं तो पानी व्यर्थ में बहता रहता है, लेकिन कुंडी में ग्राम पंचायत के लोगों की मैं सराहना करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। हर नल में उन्होंने टोटी लगा रखी है और मैं एक दिन गांव में गया, मैंने टोटी चालू कर दी और लोगों की तरफ देखा तो लोग हंसने लगे। मैंने कहा बस मैं यही चाहता था कि टोटी बंद रहनी चाहिए और ये आप अपनी तरफ से हमारे साथ में खड़े हैं। ये बड़ा ही अच्छा एक वातावरण था, बड़ा अच्छा क्षण था। और अच्छा है जल जीवन मिशन के माध्यम से जैसा कुंडी में हुआ है वैसे अन्य गांव भी हो और जल्दी से जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हर घर नल से जल, इसको देने में हम सफल होंगे। जल जीवन मिशन का काम है गांव तक पानी पहुंचाना, लेकिन गांव का वितरण करना है तो ग्राम पंचायत का ही काम है, इसके लिए जन संगठनों को आगे आना पड़ेगा। देखिए जो काम करता है वहां गलतियां होती है, चूक भी होती है, कमियां भी रहती है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का और हम सब आपके साथ हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
5: गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी और राजगढ़ मध्य प्रदेश के सांसद से बात अभी हमने अपने श्रोताओं को सुनवाई, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। सुजल, ऐसा लगता है जल अर्पण दिवस और जल उत्सव संस्कृति और जिम्मेदारी का संगम है। इसके अलावा आओ अब ये जानते हैं कि जल जीवन मिशन में कौन कौन सी डिजिटल प्रणालियां विकसित की हैं।
3: पंचायत ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय अपनी पेयजल व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकें एवं चला सकें, इसके लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियां विकसित की है। उसमें सबसे प्रमुख है पंचायत डैशबोर्ड। पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पंचायत डैशबोर्ड बनाया गया है। इसके माध्यम से सरपंच और मुखिया जी योजनाओं की प्रगति, बनी हुई जल संरचनाएं, पानी की गुणवत्ता और प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी देख सकते हैं और अपनी राय व सुझाव भी दे सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है सुजलाम डाटाबेस। इसके माध्यम से हर पाइप पेयजल योजना की जानकारी स्रोत से लेकर नल तक एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जल आपूर्ति योजना और प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट पहचान यानी सुजल गांव आईडी प्रदान की जा रही है, जिससे योजना की निगरानी, प्रबंधन और सेवा वितरण को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके। इसके माध्यम से आप अपने गांव की पेयजल योजना की जानकारी जल स्रोत से लेकर नल तक योजना के सभी घटकों को देख पाएंगे। योजना से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारियां भी इसमें उपलब्ध होंगी। तीसरा महत्वपूर्ण पहल है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम निर्णय सहयोग प्रणाली कहते हैं, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि पानी रहेगा तभी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। हर योजना का भविष्य उसके जल स्रोत की सुरक्षा पर निर्भर करता है। यह प्रणाली हमारे परंपरागत स्थानीय ज्ञान, जो सदियों से जल के साथ हमारे अनुभव से विकसित हुआ है, को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ती है। इस समन्वय से हमें बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जिससे हम अपने जल स्रोतों को रिचार्ज कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रह सकते हैं, ताकि आज नल तक पहुंचने वाला पानी कल और आने वाली पीढ़ियों तक भी बना रहे।
0: गोरखपुर के माननीय सांसद और राजगढ़ के सांसद से बात अभी हमने अपने श्रोताओं को सुनवाई। ये तो बहुत अच्छी बात बताई सुजल। ऐसा लगता है कि जल अर्पण दिवस एवं जल उत्सव संस्कृति और जिम्मेदारी का संगम है। इसके अलावा आओ अब ये जानते हैं कि जल जीवन मिशन में कौन कौन सी डिजिटल प्रणालियां विकसित की है।
3: पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय अपनी पेयजल व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकें एवं चला सकें, इसके लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियां विकसित की है। उसमें सबसे प्रमुख है पंचायत डैशबोर्ड। पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पंचायत डैशबोर्ड बनाया गया है। इसके माध्यम से सरपंच और मुखिया जी योजनाओं की प्रगति, बनी हुई जल संरचनाएं, पानी की गुणवत्ता और प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी देख सकते हैं और अपनी राय व सुझाव भी दे सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है सुजलाम डाटाबेस। इसके माध्यम से हर पाइप पेयजल योजना की जानकारी स्रोत से लेकर नल तक एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जल आपूर्ति योजना और प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट पहचान यानी सुजल गांव आईडी प्रदान की जा रही है, जिससे योजना की निगरानी, प्रबंधन और सेवा वितरण को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके। इसके माध्यम से आप अपने गांव की पेयजल योजना की जानकारी जल स्रोत से लेकर नल तक योजना के सभी घटकों को देख पाएंगे। योजना से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारियां भी इसमें उपलब्ध होंगी। तीसरा महत्वपूर्ण पहल है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम निर्णय सहयोग प्रणाली कहते हैं, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि पानी रहेगा तभी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। हर योजना का भविष्य उसके जल स्रोत की सुरक्षा पर निर्भर करता है। यह प्रणाली हमारे परंपरागत स्थानीय ज्ञान, जो सदियों से जल के साथ हमारे अनुभव से विकसित हुआ है, को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ती है। इस समन्वय से हमें बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जिससे हम अपने जल स्रोतों को रिचार्ज कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रह सकते हैं, ताकि आज नल तक पहुंचने वाला पानी कल और आने वाली पीढ़ियों तक भी बना रहे।
0: तैयारी पक्की, जिम्मेदारी सबकी। हम पानी बचाएंगे, योजना चलाएंगे, गांव का जल भविष्य बनाएंगे।
10: मैं आज समझ गई, सबसे ताकतवर गांव वो है जो पानी की रक्षा करता है। अब मेरा क्या होगा?
11: तैयारी पक्की, जिम्मेदारी सबकी। हम पानी बचाएंगे, योजना चलाएंगे, गांव का जल भविष्य बनाएंगे।
12: मैं आज समझ गई, सबसे ताकतवर गांव वो है जो पानी की रक्षा करता है। अब मेरा क्या होगा?
3: मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। साथियों, ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले टाइड ग्रांट जल एवं स्वच्छता के कार्यों के लिए निर्धारित है। इस राशि का उपयोग गांव की पेयजल योजनाओं की देखभाल, मरम्मती, जल गुणवत्ता जांच, जल संरक्षण और लोक जल उत्सव, जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे गतिविधियों में किया जा सकता है। इससे पेयजल योजनाएं लंबे समय तक सुचारू रूप से चलती रहेंगी और ग्राम पंचायत के सहयोग से लोगों को बेहतर पेयजल सेवा मिलती रहेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाइप जल आपूर्ति योजना से मिलने वाला साफ और सुरक्षित पीने का पानी केवल सुविधा नहीं है, बल्कि यह बेहतर स्वास्थ्य की बुनियाद है। इससे डायरिया, पीलिया और अन्य जल जनित बीमारियों में कमी आती है, बच्चों और गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य सुधरता है और परिवारों का इलाज पर होने वाला खर्च भी घटता है। स्वस्थ परिवार मतलब कामकाज में कमी नहीं, आमदनी में नुकसान नहीं। इसलिए पाइप नल योजना के माध्यम से मिलने वाला साफ पानी गांव की तरक्की की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, चूंकि मानसून अपने चरम पर है और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि वर्षा जल का एक एक बूंद हमें बचाना चाहिए, मेरा सबसे आग्रह है कि पानी का समझदारी से उपयोग करें और बर्बादी से बचें। साथ ही जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के रिचार्ज की तैयारी करें ताकि हमारे पेयजल स्रोत साल भर टिकाऊ बने रहें। आइए हम सब मिलकर सरकार और समुदाय की साझा जिम्मेदारी निभाएं, अपनी पाइप पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखें, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि हर घर तक सुरक्षित और नियमित पानी पहुंचता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
0: सुजल, अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की ओर जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे, उनके जवाब होते हैं। तो पिछले अंक का सवाल था, गीला कचरा और सूखा कचरा की श्रेणी में किन किन चीजों को रखा जाता है और इन्हें रखने के लिए किस रंग के कूड़ेदान होते हैं? तो इस सवाल का जवाब है, गीला कचरा, इसमें क्या क्या आता है? सब्जियों, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, चाय पत्ती, कॉफी के अवशेष, अंडे के छिलके, फूल पत्तियां आदि। और सूखे कचरे में आता है कागज, गत्ता, प्लास्टिक की बोतलें, पैकेट, डिब्बे, कांच, धातु इत्यादि आदि वस्तुएं। तो याद रखने की आसान ट्रिक है कि हरा डब्बा यानी गीला कचरा, नीला डब्बा यानी सूखा कचरा। तो यही सही जवाब हमें भेजा है गोरखपुर से रमेश जी पटना, इन्होंने सही जवाब भेजा है हमें। उसके बाद दो नंबर पे है ऋषि पडलवार, जिनका गांव है शेंदुरनी, यहां से इन्होंने हमें सही जवाब भेजा है। सभी को अभिनंदन। इस अंक का सवाल, क्या होता है जल अर्पण दिवस, क्या आपके गांव में ये मनाया गया है? अरे सुजल, अगले अंक के बारे में भी तो कुछ बताओ।
2: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे स्वच्छ भारत मिशन देश के हर गांव को स्वच्छ और एक गांव को ODF प्लस ग्राम बनाने हेतु क्या प्रयास कर रहा है और क्या रहेगी उनकी रणनीति। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और सुनिए स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
0: अगले अंक तक अब सभी को हमारा नमस्कार।

0: मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा संचालित, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।